0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

चैपन सुन रहे हैं आप सुधाक्षी के साथ रही चुप्रस्वानी 1701 AM पर डिजिटल डिटॉक्स डे। हम इस बारे में बहुत बात करते हैं, हम आपसे कहते हैं कि यार हफ्ते में एक दिन ना डिजिटली डिटॉक्स रहा करिए, लेकिन कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हमें हो चुकी है हमारे फोन की लत। लेकिन नीदरलैंड ने ये बात सच कर दिखाई है और उसने ये नियम लागू कर दिया है। पूरे देश ने नहीं भाई, इस देश के एक छोटे से गांव ने एक नियम लागू किया है कि वहां पर हर हफ्ते का एक दिन डिजिटल डिटॉक्स डे होगा। यानी उस दिन गांव के सभी लोग अपने फोन बंद करके पार्क्स में जाएंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, एक दूसरे के साथ चेस खेलेंगे, एक दूसरे के सुख दुख को जानेंगे। क्या लगता है आपको, हम सबके शहरों में भी कोई एक ऐसा दिन होना चाहिए जहां हम डिजिटली डिटॉक्स हों? आप सोचिए ना, कितनी सारी चीजों को हम कर पाएंगे अगर हमारे हाथ में फोन ना हो, सोचिए। और सदाक्षी के साथ सुनते रहिए टैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर। और एक अगले ट्रैक के साथ चलिए आपको लेकर चलते हैं आगे।

रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं टैपेंस, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को सताक्षी के साथ। ऑफिस सर्वाइकल टिप, बहुत ही सिंपल सी और बढ़िया सी टिप है ये। देखिए, आज आप ऑफिस जाएं तो काम करना शुरू करने से पहले 2 मिनट बैठिए, एक गरम घूट अपने कॉफी या चाय का लीजिए और अपनी टू डू लिस्ट में सिर्फ 3 सबसे जरूरी कामों को मार्क कीजिए। जब वो 3 काम हो जाएं तभी चौथे काम को हाथ लगाइए। मल्टीटास्किंग ना दोस्तों एक छलावा होती है और इसमें हम उलझे रहते हैं। एक वक्त में एक काम सुकून के साथ कीजिए। अगर कोई काम आज ना हो पाए तो पैनिक मत होइए, कहिए इट हैपेंस, मैं भी इंसान हूँ और जरूरी नहीं है कि एक दिन में सारे काम कर लूँ, है ना जी। आइए फिर एक और ट्रैक मेरे साथ एंजॉय कीजिए इसी बात पर, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी 170।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

बात करते हैं फ्रूट थ्योरी की, क्योंकि अगर इस थ्योरी को अगर आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। देखिए, आपके घर में जब भी कोई फ्रूट आता है या आपके हाथ में, इस वक्त बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, आपके हाथ में अगर फ्रूट है तो क्या कभी आपने सोचा था कि वो फ्रूट आपके पास आएगा? आप यही कह रहे होंगे कि सताक्षी कैसे स्टूपिड बात कर रही हो, लेकिन नहीं, ये बात स्टूपिड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है। देखिए, जो फ्रूट इस वक्त आपके हाथ में है, आपके फ्रिज पे रखा है, आपकी डाइनिंग टेबल पर रखा है, आपने कभी नहीं सोचा था कि वो फ्रूट आपके पास होगा, लेकिन देखिए कहीं किसी ने उसका कभी प्लांट लगाया, उस प्लांट में फल आया और वो फल ना जाने कितने रोड्स को क्रॉस करके, कितनी सब्जी मंडी या फ्रूट मंडी में जा करके, कितने फ्रूट स्टोर में जा करके, वो कैसे कैसे रोड क्रॉस करके, सीमाएं क्रॉस करके वो आप तक पहुंचा, क्योंकि उस फ्रूट को आप तक पहुंचना ही था। आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, आप कहीं उसको ढूंढते हुए नहीं गए, आपके तो दिमाग में, जहन में भी नहीं था, आपको तो पता भी नहीं था कि वो फ्रूट आपके हाथ में होगा, बट है। सेम एज कई बार हमारी लाइफ में भी होता है, जो चीजें हम तक आनी हैं वो हम तक कैसे ना कैसे करके पहुंच ही जाती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज जो अभी तक आपको नहीं मिली हैं, और आपको शायद वो दिमाग में भी नहीं होगी कई बार कि ये मौका आपके पास आ सकता है, लेकिन वो मौका जो आपके लिए लिखा जा चुका है वो मौका भी आप तक पहुंचता है। ये होती है फ्रूट थ्योरी, है ना, एक अनजान सा फ्रूट जिसका कहीं कोई पता नहीं था, वो अचानक से आपकी डाइनिंग टेबल पर रखा है, आपके हाथ में है।

0: इसलिए मैं क्यों कह रही हूँ इस वक्त विशेष दे रही हूँ बर्थडे बेबीज को। भाई बिल्कुल नहीं, मैं तो उस गाने की बात कर रही हूँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा गाया जाता था। जी हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, पूरी दुनिया में ये गाना जो है ये सबसे ज्यादा आज भी गाया जाता है। अच्छा, पहले ना इस गाने से रॉयल्टी मिला करती थी और वो सालों तक एक कंपनी के पास जाती थी जिसने शायद सबसे पहले इसे बनाया होगा, और बाद में इसे पब्लिक डोमेन में लाया गया। और अब हम सबके लिए बड़ा इजी हो गया है इसे गाना, है ना, वरना पहले जो है इस गाने को कहते हैं गाने से पहले ना टैक्स देना पड़ता था, मतलब फीस पे करनी पड़ती थी। तो यस, जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स जो हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया कितनी दिलचस्प है, कितनी अनोखी और कितनी मजेदार है। एक और ट्रैक इसी बात पर सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: Authentic, original, and better than our rivals.

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

मीरा फाजली साहब का एक बहुत ही उम्दा शेर है, दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, हो जाए तो सोना है। इस शेर की एक गहराई है। हम सबके हैप्पीनेस की बेसलाइन तब तक स्ट्रॉन्ग है जब तक जिस चीज की ख्वाहिश हम करते हैं वो हमें ना मिले। ये साइकोलॉजी है और ये बहुत बड़ा फैक्ट है दोस्तों कि तब तक आपके लिए किसी चीज की वैल्यू रहती है जब तक वो आपको नहीं मिलती है, लेकिन जिस दिन वो आपको मिल जाती है आपके लिए वो मिट्टी हो जाती है क्योंकि अब वो चीज आपकी हो जाती है। तो हाँ, निजा फाजली जी ने इस चीज को शायद बहुत पहले समझ लिया था और इसीलिए उन्होंने इतना उम्दा शेर जो है वो लिख दिया। सोचिए कितनी गहरी बात है। आइए एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए छापन्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।

0: आज इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ एक और बेहतरीन साथ। कल फिर से ही इट हैपेंस पर हम और आप साथ साथ चलेंगे और जिंदगी के कुछ नए फलसफों के साथ अपने ही लाइफ को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आज अब इस सफर से इजाजत लेने का वक्त है, सो मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदगी को जीते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।
1: अरे ओ खिलाड़ी, आज संडे को फ्री, बोलो लोगे हमारे संग सेल्फी।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वेटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाने वन सन वन एम ते जी अज के संदेश अलग दिन बने हुए होप तुसी इन्हां गीतां नूं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हो। तो इस तरीके दे नाल सोहणे सोहणे गीत मैं अगे भी तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी नाले करदी रहूंगी गल्लां। तां हुण गल्लां करिए ना जे आपां तां बॉलीवुड दे विच बहुत कुछ खास हुंदा हॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड। तां मैनूं इंटरस्ट बॉलीवुड दे विच है क्योंकि बॉलीवुड दी फिल्मां इन्नियां सोहणियां आ रही है ना। तां सोचा कि तुहानूं वी दस्सां, देखो पिछे चलदे हैगे आ 1780s 1990s दहाके दे सुपरस्टार्स नूं दर्शकां दा बेहिसाब प्यार मिलिया। राजेश खन्ना तो लैके नूं लैके कुड़ियां दी दीवानगी किसे तो छुपी नहीं है कि ओ जिस रास्ते चो लंघदे सीगे ना उथों दी धूल नाल कुड़ियां अपनी मांग भर लैंदियां सी। राजेश खन्ना तो बाद धर्मिंदर अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा ऋषि कपूर अते मिथुन चक्रवर्ती नूं वी दर्शकां ने खूब प्यार दिता। पूरे तीन दहाकियां तक इन्हां सितारियां दा बॉलीवुड इंडस्ट्री विच जलवा रहा। इस विचों सिर्फ दो स्टार्स दे बेटे बेटियां नूं ना इंडस्ट्री विच सफलता मिली है। ते ओ सुपरस्टार ते उन्हां दे बेटे कौन ने उन्हां बारे दसूंगी तुहानूं, पर पहला सुणाउंदी हां गीत।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसानी 101 एम ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो तो सब तो पहला गल करते हैं बॉलीवुड दे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना दी। तो देखो राजेश खन्ना दा असल नाम ना जतिन खन्ना सीगा। राजेश खन्ना दे चेतन आनंद दी फिल्म आखरी खत नाल उन्होंने बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सीगा। उन्होंने शक्ति सामंत की फिल्म आराधना फिल्म नाल रातों रात स्टारडम हासिल किया सीगा। तो राजेश खन्ना ने ना 1969 यानी कि 1969 तो लैके 1974 यानी कि 1974 तक 17 तो ज्यादा हिट फिल्मां दित्तियां सी। उन्होंने कटी पतंग इतफाक डोली बंधन दो रास्ते खामोशी ते द ट्रेन सच्चा झूठा सफर आनंद आन मिलो सजना अंदाज मर्यादा हाथी मेरे साथ ही महबूब ते छोटी भाभी वर्गियां हिट फिल्मां दित्तियां सी। 1974 तो उन्हां दा डाउनफॉल शुरू होया सी। फिर उन्होंने 1980 के दहाके विच वापसी की। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया नाल 1973 विच ब्याह किया सी ते ब्याह तो बाद उन्होंने दो बेटियां ट्विंकल खन्ना ते रिंकी खन्ना होईयां सी। इन्हां बारे दसना थानू इनी ये दसना जरूरी हुंदा ना छोटियां छोटियां चीजां दसनियां बहुत ज्यादा जरूरी हुंदियां। बेटियां बारे दस दी पर पी लैंगी सुन लो।

जी अनु जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसौने वंसन ओआरएम ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो राजेश खन्ना दिया दोनों ही बेटियां ने बॉलीवुड विच किस्मत अजमाई, दोनों नु निराशा भी हाथ लगी। राजेश खन्ना की वड्डी बेटी ट्विंकल खन्ना ने 1995 विच बॉबी देओल दे नाल बरसात फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सी। डेब्यू फिल्म तो सुपरहिट रही पर इस तो बाद आने वाली मूवी फ्लॉप रही। ट्विंकल खन्ना ने जान दिल तेरा दीवाना इतिहास इंटरनेशनल खिलाड़ी जुल्मी बादशाह मीला वर्गिया फिल्मों में काम किया। ट्विंकल की भैन रिंकी खन्ना का करियर भी बॉलीवुड विच कुछ खास नहीं चल पाया। रिंकी खन्ना ने प्यार में कभी कभी मुझे कुछ कहना है वर्गिया फिल्मों में काम किया पर तकदीर नहीं बदली। ते फिर तकदीर जदो नहीं बदली ना ता फिर जल्दी ही उन्होंने बॉलीवुड तो विदा भी ले लिया ते ब्याह करवा लिया। ट्विंकल खन्ना ने जिते अक्षय कुमार दे नाल ब्याह कीता ता उधर रिंकी खन्ना ने बिजनेसमैन समीर सरन दे नाल ब्याह करवाया।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसानी 101 एम ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो हुण गल करदे हैं कि 70 ते 80 यानी कि 70s 80s दहाके दे सब तो वड्डे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन दी महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक ने 2000 रिफ्यूजी फिल्म नाल करीना कपूर के नाल बॉलीवुड विच डेब्यू किया। जेबी दत्ता के निर्देशन विच बनी यह फिल्म कुछ खास नहीं कमाल कर सकी। अभिषेक बच्चन के करियर की शुरुआत दी 14 फिल्मा फ्लॉप या डिजास्टर रही। उधर 2004 धूम फिल्म तो उन्होंने सफलता का स्वाद चक्या है। फिर बंटी और बबली, धूम 2, गुरु हिट रही, धूम 3, हैप्पी न्यू ईयर, हाउसफुल 3 वर्गे मल्टी स्टारर फिल्मा विच उन्हां दा काम सराया गया, पर वह सोलो हिट देण विच फेल रहे। अभिषेक बच्चन भी अपने पिता वर्गे स्टार नहीं दोहरा पाए, पर अज भी स्ट्रगल कर रहे ने।
1: क्योंकि मेरी जिंदगी में चीजें सीखी

जितेंद्र दे बेटे ने तुषार कपूर उन्होंने गल करते हैं। तुषार कपूर ने बॉलीवुड विच मुझे कुछ कहना है डेब्यू किया। पहली फिल्म तो सफल रही पर फिर किस्मत ने साथ नहीं दिता। तुषार कपूर की एक्टिंग भी दर्शकों लुभा नहीं सकी। क्या दिल ने कहा जीना सिर्फ मेरे लिए कुछ तो है ते ये दिल गायब खाकी क्या कूल है हम गोलमाल लव स्टोरी क्या लव स्टोरी है शूट आउट एट लोखंडवाला बहुत सारिया फिल्मा कीतिया पर कोई फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी। मल्टी स्टारर दे विच उन्हां नूं सराया गया पर उही गल ना अपने दम ते ओ वी सोलो हिट नहीं दे पाए ते जल्द ही ओ साइड हीरो बन के रह गए।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: मिलिया सुहाना साहब तो रब सीगा जानू कले कले खाब तो रब सीगा जानू कले कले खाब तो नी मैनू सारा कुछ मिलिया सुहाना साहब तो।
1: Yes, welcome back. एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 एम ते जी आपचे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होयो। देखो जितेंद्र दी एक टीवी हैगी है, बेटा नहीं कमाल कर सकिया, बेटी ने कीता हैगा एकता कपूर। जी हाँ, एकता कपूर टीवी दी दुनिया दी क्वीन कहलाई जांदी है। उन्होंने तुषार कपूर तो ज्यादा उन्होंने सफलता मिली है। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म कंपनी के बैनर तले एक तो वध के एक सीरियल प्रोड्यूस कीते। एकता कपूर ने हम पांच, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, कुसुम कहीं तो होगा, कसम से पवित्र रिश्ता बड़े अच्छे लगते हैं, ते जोधा अकबर वर्गे कई सीरियल्स बनाए। तुषार कपूर ते एकता कपूर ने ब्याह नहीं किया। तुषार कपूर जो 2016 विच सैरोगेसी ते आईवीएफ के जरिए एक बेटे के पिता बने, सिंगल फादर बने। तुषार ने अपने बेटे का नाम लक्ष्य रखा है। तुषार कपूर की भैन एकता कपूर ने भी 27 जनवरी 2019 विच सैरोगेसी के जरिए बेटे रवि कपूर नूं जन्म दिता। सिंगल मदर बनी उन्होंने अपने पिता जितेंद्र के असली नाम ते बेटे का नाम रखा।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
2: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: मेनू सारा कुछ मिले सुहाना साहब तो।
1: जी अरुण जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 107.1 जी आर जी संदेश अलग दे नाल सी पड़े हुए। देखो 70s 80s दे सुपरस्टार्स दे विच सिर्फ धर्मिंदर ही क्लौते अजिहे स्टार है ने जिन्हां दे वड्डे बेटे सनी देओल दा करियर बेहद सफल रहा। सनी देओल ने 1983 दी बेताब फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सी। फिर अर्जुन, घायल, दामिनी, घातक, बॉर्डर, गदर एक प्रेम कथा, गदर टू, बॉर्डर टू वर्गियां ब्लॉकबस्टर फिल्मां दित्तियां। सनी देओल ने अपने दम ते सोलो हिट दित्तियां ने। उधर उन्होंने भरा बॉबी देओल ने करियर की शुरुआत 1995 विच बरसात फिल्म नाल कीती सी। मूवी सुपरहिट रही, फिर सोल्जर, गुप्त वर्गियां हिट फिल्मां दित्तियां, पर इस तो बाद उन्होंने नसीब उन्हां तो गुस्से हो गया। बॉबी ने फ्लॉप फिल्मां दी लाइन चुन ली, पूरे 15 साल फ्लॉप करियर का दौर चुनिया। 2019 विच उन्हां दी किस्मत पलटी ते ओ नेगेटिव रोल्स करन लग गए। एनिमल मूवी विच उन्हां दा छोटा जिहा रोल दर्शकां दे दिल नूं छूकिया।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हा? लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं। निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

हाउस देखो बेड़ा हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का, पर एक हो सुपरस्टार की गल करनी रह गई सी, सोचा उन्हों की गल भी जरूर कर ला ते उन्हों की गल कर लैनी है जी। तो सुपरस्टार ऋषि कपूर 1973 विच आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी दे नाल डेब्यू किया सी। उन्हां ने अपने करियर दे विच बहुत शानदार फिल्मां दित्तियां सी। अपनी छवि चॉकलेट इन द हाउस देखो बेड़ा हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का, पर एक हो सुपरस्टार की गल करनी रह गई सी, सोचा उन्हों की गल भी जरूर कर ला ते उन्हों की गल कर लैनी है जी। तो सुपरस्टार ऋषि कपूर 1973 विच आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी दे नाल डेब्यू किया सी। उन्हां ने अपने करियर दे विच बहुत शानदार फिल्मां दित्तियां सी। अपनी छवि चॉकलेटी रही हैगी उन्हां दी।

कपूर दे टैलेंट से कामयाब भी थे, पूरी इंडस्ट्री ने मान ली है असी भी मान के है ताई कुछ सितारे है ने उन्होंने बच्चे ने जिन्होंने की किया थानू दस्या है बाकी तुसी की किया सारा दिन तुसी जरूर दस्या करो साडे नाल जुड़ते रह करो रेडियो बिरसोनी बंसन ओवर एम साडे फेसबुक पेज है जिते बिरसोनी बिरसोनी डॉट कॉम साडी ईमेल आईडी है जरिए जिहड़ा भी अपनाउणा अपना लो साडे नाल पता जरूर करते रह करो बाकी अपना ख्याल रख्या करो ते मैं तां इही कहना कि कल करांगे मुलाकात रखो अपना ख्याल सत श्री अकाल।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई?

0: क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
0: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ,
1: एक्सीलेंट सर्विस।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: ஐயா சூக்கு சூக்கு
1: ஐயா கரும் மை கியா சூக்கு சூக்கு ஐயா.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे ऑर्डर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहला सवाल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो और क्या आपने अपनी आरजे निव्या को मिस किया? जी हाँ, ये सारे के सारे सवालों का जवाब मुझे चाहिए आपसे, और जवाब वही चाहिए जो मैं सुनना चाहती हूँ। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा तुमको हिटलर हो गया, मतलब जवाब वही चाहिए जो मैं सुनना चाहती हूँ। जी हाँ, या तो मैं राजकुमार की तरह बात कर रही हूँ या तो मैं हिटलर की तरह बात कर रही हूँ। आई थिंक दोनों ही थोड़ी सेम सी बातें करते हैं। चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब जरा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अच्छे से। और प्रोग्राम की शुरुआत आपको बताइए कैसे होती है? वेल एक हेल्दी रिचुअल के साथ, वही हेल्दी रिचुअल जो बेसिकली हमें हेल्प करता है अच्छे से इस प्रोग्राम को आप तक लाने में और हमें हेल्दी रखता है फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। जी हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड कर दिया है, इरिटेट कर दिया है, या आपको लग रहा है कि अब जो आपको काम करना चाहते हो आप वो कैसे करोगे, मतलब आप कैसे कर पाओगे, तो आपको बस यही करना है, आपको डीप ब्रेथ एक्सरसाइजेस लेनी है। जी हाँ, डीप ब्रेथ एक्सरसाइज करनी है और बस लंबी गहरी सांसें। आई एम टेलिंग यू, लंबी गहरी सांसों में जो जादू है ना वो किसी भी चीज में नहीं हो सकता है। एंड आई एम नॉट लाइंग हियर, जी हाँ, एंड आई एम नॉट किडिंग हियर, इट्स ट्रू। जी हाँ, इसी के साथ आइए करते हैं इसी हेल्दी रिचुअल के साथ शुरुआत। क्या बात, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते यहाँ पर अब चलते हैं प्रोग्राम की शुरुआत की तरफ। आपको पता है प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होती है? वेल एक बढ़िया से गाने के साथ, और वो है मिर्जापुर द मूवी का वारू फॉर एवर। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी गपशप।

क्या बात है, खूबसूरत गाना, बहुत ही खूबसूरत गाना। नई मूवी प्रेम की जानू का ये गाना है और इसे अरमान मलिक ने गाया है। भाई क्या ही बात है। जी हाँ, तो दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा मौसम की ओर, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। मौसम के बारे में आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 24.5 डिग्री सेल्सियस के करीब है, बट फील आपको उससे कम हो रहा है, 23.7 डिग्री सेल्सियस के करीब आप फील कर पा रहे हो। वहीं अगर बात की जाए रात की तो 17 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे। जी हाँ, यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा और 60% चांसेस बारिश के। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बारिश जो है वो होने वाली है, भर भर के बारिश जो है वो होगी, और अगले कुछ दिनों में मैं सिर्फ और सिर्फ बारिश देख पा रही हूं, सो उसके लिए रेडी रहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक दो दिन का काम है और फिर ठीक हो जाएगा। काफी बारिश दिख रही है मुझे आगे जाके। इसी के साथ यहां पर एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट, या अब क्योंकि बारिश हो रही है तो फेयर नहीं है, एक्सीलेंट है एयर क्वालिटी, तो उसका भी मजा लीजिए। और इसी के साथ कल यानी थर्सडे और फ्राइडे की बात कर लेते हैं, तो थर्सडे को 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 50% चांसेस है बारिश होने के। जी हाँ, वहीं अगर फ्राइडे की बात की जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 60% चांसेस है बारिश होने के। बीच में संडे को आपको राहत मिल सकती है, बारिश थोड़ी कम हो सकती है और सूरज जो है खिला खिला रह सकता है, लेकिन उसके बाद मुझे काफी बारिश होती हुई नजर आ रही है, मतलब अगले हफ्ते की स्टार्टिंग में। सो मैंने कहा ना, प्रिपेयर्ड रहिए और बारिश जो है वो ऐसे ही मिलती रहेगी आपको कुछ दिन तक। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपकी फरमाइशों का, मतलब आपकी फरमाइशें हम तक कैसे पहुंच सकती हैं वो आपको बताने का। जी हाँ, अगर साफ शब्दों में कहा जाए, जो आपको गाने पसंद हैं और आप चाहते हैं हमारे साथ शेयर करना, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना, तो आप वो कर सकते हैं विद एक नंबर। जी हाँ, विद एक नंबर। आप लोग बोलोगे ये क्या है? वेल ऑफकोर्स मैं आपको एक नंबर देने वाली हूँ, उसे आपको डायल करना है और उसके थ्रू आप हमें कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं और आप अपने फेवरेट गाने हम तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें फरमाइश कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं और तो और किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। तो हुआ ना मजेदार काम। सो व्हाट यू गोना डू इज आपको अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है। नंबर है +9182888-71701। आई रिपीट +9182888-71701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं अपनी फरमाइश, हमें हमारी तरफ से एक और मजेदार सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर मेरे सामने एक मीम आता है और वो मीम इतनी सेंस बना रहा था कि मुझे लगा वाह, मुझे मेरे लिसनर्स के साथ जो है इसे शेयर करना है और मुझे उनका भी राय जो है वो उस पर जानना है। जी हाँ, तो वहां पे लिखा हुआ था कि घर वाले पता नहीं क्यों मुझे कामचोर बोलते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, घर वाले पता नहीं क्यों मुझे कामचोर बोलते हैं। मैं क्यों किसी का काम चुराऊंगा, मैं तो खुद अपना काम दूसरों से करवाता हूँ। एंड आई वाज लाइक या That's true. मतलब काम चोर, कोई अगर काम नहीं करता है तो उसको काम चोर नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि जिसने भी ये टर्म बनाई है वो थोड़ा सा गलत जो है वो टर्म बना गया है। जी हाँ, वो ध्यान से सोच नहीं पाया, उसने काम चोर बना दिया। जी हाँ, काम चोर। अब कोई काम क्यों चोरी करेगा, जो खुद जो है वो काम जो है वो नहीं करता है, वो लेजी है, वो दूसरों का काम नहीं चुराएगा, वो क्यों चुराएगा किसी का काम। चोरी तो मतलब वो होती है ना जो हम दूसरों से चुराते हैं। सो काम चोर क्यों, खुद का काम नहीं करना काम चोरी कैसे हो सकता है। सो आई थिंक वी नीड अ डिफरेंट टर्म फॉर इट, बिकॉज लेट्स बी रियल, घर वाले पता नहीं क्यों मुझे कामचोर बोलते हैं। मैं क्यों किसी का काम चुराऊंगा, मैं तो खुद अपना काम दूसरों से करवाता हूँ। सीधी सी बात है भाई, मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी अपना काम दूसरों से करवाती हूँ, मैं भी कामचोर नहीं हूँ। सो डोंट यू डेयर, कोई भी मुझे अब से कामचोर नहीं बोलेगा। जी हाँ जी हाँ, मुझे सच में लगता है कि हमारी जो कुछ टर्म्स है ना वो लिटरली मतलब गलत है। जैसे ये काम चोर, फिर कब अगर आप कहीं बहुत दिनों बाद जाओ तो कोई आपको ताना मारने के लिए बोलता है, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए आप। अरे भूलना थोड़ी हुआ, वो तो याद आना हुआ। मतलब आपने उल्टी कहावतें क्यों बनाई है, मुझे नहीं समझ आता। सो या, काम चोरी इज अ नॉट अ राइट टर्म। आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए, जो काम नहीं करते हैं, जो लेजी होते हैं, वो काम चोर के अलावा क्या उन्हें बुलाया जा सकता है। या यू टेल मी अबाउट इट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲਾਇਰ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਮਾਈ ਕੇਸ।
2: ਗੋ ਫਾਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੀਰੇ, ਅਤੁਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਰੱਗ ਓਫੈਂਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੈਟ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਐਂਡ ਵਰਕ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਟ।
3: ਥੈਂਕਸ ਟਨ ਵੀਰੇ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਰਿਲੈਕਸਡ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, एक स्टोरी है जो इंटरनेट पर आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और ये स्टोरी है एक व्यक्ति की, एक जापानीज व्यक्ति की, जो अपनी वाइफ की तलाश कर रहा है। आप लोग बोलोगे कि अच्छा ठीक है, आगे बताओ निव्या। वेल, ये तलाश शुरू हुई 2011 से। जी हाँ, 2011 में जो बहुत ही बड़ा भूकंप और सुनामी जापान में आया था, उसी वक्त उनकी ये वाइफ जो है वो उनसे बिछड़ गई थी। वो आज भी नहीं मिल पाई हैं, ना अथॉरिटीज को उनकी बॉडी मिली, ना वो खुद मिले, कुछ भी उनके बारे में पता नहीं चला। लेकिन अथॉरिटीज ने लोगों को ढूंढना छोड़ दिया, उनकी वाइफ को ढूंढना छोड़ दिया, लेकिन उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ढूंढना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। एंड यू नो व्हाट, मैं एक चीज देख रही थी, जहां पर डिवोशन होता है उनकी स्टोरियां बहुत ज्यादा ट्रैजिक क्यों होती है। मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि डिवोशन भी हो और वो ट्रैजिक भी ना हो। मतलब बहुत सारी स्टोरीज है जहां पर हम लोगों को देखते हैं कि उन्होंने अपने प्यार को कितना फॉर ग्रांटेड लिया है और वो नहीं इतनी कदर करते एक दूसरे की, लेकिन वो पूरी जिंदगी साथ रहते हैं, जहां पर कदर नहीं होती है। लेकिन जहां पर कदर होती है, उनमें से कितनी सारी स्टोरीज जो हैं उनका एंड एकदम ट्रैजिक होता है, और वही यहां पे भी हुआ। फॉर नियरली 15 ईयर्स, यासुआ ताकामात्सू, जी हाँ यही नाम है उस व्यक्ति का, जो कि लिटरली पानी में डाइव करते हैं और अपनी वाइफ, उनकी वाइफ का नाम यूको था, उनकी तलाश वो करते हैं। जी हाँ, स्टार्टिंग में दो साल तक वो उन्हें ढूंढते रहे जहां पर वो गुम हुई थी, लेकिन ऑफ कोर्स जो सुनामी आई थी उसके बाद जो है पानी बहुत सारे लोगों को बहा कर ले गया था। उन्होंने दो साल बाद जब अथॉरिटीज ने थोड़ा धीमा कर दिया अपना तलाश करने का कामकाज, तो उन्होंने डाइविंग सीखी, स्कूबा डाइविंग सीखी, ताकि वो अपनी बीवी की तलाश खुद कर सके। जी हाँ, फॉर 15 ईयर्स ही इज बीन डूइंग इट। 750 टाइम्स वो डाइव कर चुके हैं अपनी वाइफ की तलाश में। जी हाँ, वो कहते हैं उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा करीब है, मतलब वो जितनी बार डाइव करते हैं वो उतना ही ज्यादा करीब अपनी वाइफ के पहुंचते जाते हैं। जी हाँ, आपको मैं ये भी बता दूं कि जो लास्ट मैसेज जो उनके फोन पे था, उनकी वाइफ के फोन पे था, क्योंकि उसके बाद ये पूरे इंसिडेंट के बाद जहां वो काम करती थी, वो एक बैंक में काम करती थी और उसी के आसपास जो यसुओ है उनको उनकी वाइफ का फोन मिला। जी हाँ, और उनकी वाइफ ने जो लास्ट मैसेज उनके लिए छोड़ा हुआ था वो ये था कि आर यू ओके, आई वॉन्ट टू गो होम। जी हाँ, आर यू ओके, आई वॉन्ट टू गो होम। एंड दिस पर्सन हैज बीन लिटरली ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग टू फाइंड हिज वाइफ सिंस देन। जी हाँ, जैसे मैंने कहा, वो अभी भी मानते हैं कि अभी भी वो अपनी वाइफ, वेल ऑफ कोर्स उनकी वाइफ अब जिंदा तो नहीं ही होंगी, लेकिन उनकी बॉडी भी उनको नहीं मिली थी और इस चीज का बहुत ज्यादा मलाल है उन्हें, और वो कहते हैं कि एटलीस्ट मैं उनका कुछ ना कुछ तो खोज कर रहूंगा ही। 15 साल हो गए हैं उस डेवेस्टेटिंग फ्लड को, उस सुनामी को आए हुए, उस अर्थक्वेक को आए हुए। बहुत सारे जापानीज लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को उसमें खो दिया था। अगर नेचुरल डिजास्टर्स की हिस्ट्री में देखा जाए तो वो तीसरा सबसे महंगा नेचुरल डिजास्टर था इस पूरी दुनिया में। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जापानीज पीपल आर द हेल्दीएस्ट पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ। जी हाँ, और ऐसा भी कहा जाता है कि जापानीज पीपल आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ। तो जापानीज लोगों का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो लेजी लोगों के साथ जो है वो जमता नहीं है। तो लेजी लोगों ने अपना एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया। सबसे पहले आपको बताते कि जापानीज कॉन्सेप्ट क्या है। जी हाँ, सो जापानीज कॉन्सेप्ट है, इफ वन कैन डू यू कैन डू, इफ नन कैन डू यू मस्ट डू। जी हाँ, तो ध्यान से सुनिए, जापानीज कॉन्सेप्ट है, इफ वन कैन डू यू कैन डू, इफ नन कैन डू यू मस्ट डू। लेकिन जो लेजी लोग हैं और बाकी की दुनिया के हैं, जो कि ज्यादा काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं, थोड़ी आपकी आरजे निवेदा की तरह, वो कहते हैं इफ वन कैन डू लेट हिम डू। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, लेजी लोगों का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, इफ वन कैन डू लेट हिम डू, इफ नन कैन डू हाउ कैन आई डू। जी हाँ, मतलब सीरियस ही बात है। मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी कि सबसे ज्यादा क्रिएटिव जनरेशन जो है वो हमारे पास आ गई है, मतलब सबसे ज्यादा कामचोर जनरेशन भी है, या आई एम टॉकिंग अबाउट जेन ज़ीज़, एंड दे आर द मोस्ट क्रिएटिव। मतलब वो हर एक चीज में एक लॉजिक और एक सवाल निकाल देते हैं। आप लोग जो करते आ रहे हैं उसमें भी वो सवाल निकाल देंगे, और ये काबिलियत है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, जापानीज कॉन्सेप्ट को फेल करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर परदेसी आपको सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
13: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
14: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
15: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
14: अच्छा, वो क्या?
15: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में.
14: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
15: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
16: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, इसी के साथ बर्थडे विश करने का वक्त हो गया है. यहाँ पर एक बहुत ही उम्दा सिंगर को, आर्टिस्ट को, जिनकी आर्टिस्ट्री, जिनके सिंगिंग के लोग दीवाने हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कुमार सानू. जी हाँ, कुमार सानू साहब का जन्मदिन है आज. तो सबसे पहले हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको. रेडियो ब्रिसवानी की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद सर. हम यही कहेंगे कि ये साल आपके लिए अच्छा रहे, खूबसूरत रहे, मजेदार रहे, आप हेल्दी रहे, वेल्दी रहे और ऐसे ही अपनी आवाज का जादू जो है वो चलाते रहे. जी हाँ, ऑल्दो हमें कुमार सानू के गाने आजकल कम सुनने को मिलते हैं, बट मैं तो यही कहूंगी कि इनकी आवाज में अभी भी इतना जादू है. सो प्लीज फिल्म डायरेक्टर्स, इन्हें और गाने दीजिए, बिकॉज लेट्स बी रियल, वी नीड गुड सॉन्ग्स एंड दे आर द सिंगर्स जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाने गाए हैं. सो कुमार सानू साहब का जन्मदिन है आज, तो मुझे लगता है कि एक गाना उनके लिए बनता है और उन्हीं का गाना अगर हम प्ले करेंगे उनके बर्थडे पे तो जरा अच्छे से सेंस बनेगी यहाँ पर. जी हाँ, तो गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ कुमार सानू साहब का, वो है मेरा चांद मुझे आया है नजर. और उनका एक गाना है जो कि हम आजकल बहुत ज्यादा ज्यादा सुन रहे हैं और बहुत ज्यादा इंटरनेट पे वायरल हो रहा है, लेकिन हम उसे बहुत ज्यादा प्ले कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि आज वो नहीं प्ले करना चाहिए, आज उससे हटकर कुछ और प्ले करना चाहिए। सो ये है गाना आप सबके लिए, एंड अगेन कुमार सानू साहब, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से हमारी तरफ से।

दोस्तों, उसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, खबरों के बारे में बात करने का वक्त हो गया है, क्योंकि यूएन नेशंस जो है इकट्ठा होके एक बहुत ही बड़े जो है वो समारोह में पार्टिसिपेट किया है उन्होंने। वहां पर एंटोनियो गुटेरस के सामने अमेरिका से लेके, फ्रांस से लेके, टर्की से लेके सब ने अपनी अपनी राय रखी है। और वो राय क्या है आइए जरा आपको बता दें, क्योंकि उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे, उसमें फ्रांस भी शामिल था और भी बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो वहां पर शामिल थे। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रांस से। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि हम सभी को शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, सो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गाजा पट्टी में शांति कायम होने से जुड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर सवाल उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र में मैक्रों ने कहा कि शांति की घोषणा के बावजूद गाजा में अभी तक कोई मानवीय गलियारा दोबारा नहीं खोला गया है। मैक्रों ने गाजा की स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, दुनिया के सामने ऐसा दृश्य है जिस पर सभी को शर्म आनी चाहिए। मैक्रों ने ट्रंप के गाजा शांति योजना को कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाने की आलोचना की। मैक्रों ने कहा, अगर हम गाजा को लेकर लगातार संतुष्ट बने रहते हैं तो हमारी विश्वसनीयता क्या रह जाएगी। कुछ लोग कथित शांति का बखान कर रहे हैं, लेकिन इस शांति ने मानवीय उद्देश्यों के लिए एक सेकंड के लिए भी पहुंच सुनिश्चित नहीं की है। क्या हम चुपचाप खड़े रहकर ऐसे दृश्य को देखते रहेंगे जिस पर हम सभी को शर्म आनी चाहिए। वेल, बात तो सही कही है यहां पर इमैनुअल मैक्रों ने, लेकिन वो खुद भी यहां पर दूध के धुले हुए नहीं है, ये भी हम सबको पता है। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है।

जी हाँ दोस्तों, आप संयुक्त राष्ट्र की महासभा चल रही थी तो वहां पर कुछ लोग आते हैं और उनको अपने घर के शीशे नहीं दिखते जो कांच के हैं, लेकिन दूसरों पर पत्थर मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अर्दुआन को ही ले लीजिए, मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड पीपल में से अगर हम गिनती करें तो दिस ही इज ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल, बिकॉज ही लाइक्स डूइंग स्टफ जो कि सेंस नहीं बनाता। जी हाँ, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि उन्होंने क्या कहा है और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। सबसे पहले उनकी बात सुनते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दुआन ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए कश्मीर का जिक्र किया। ओह माय गॉड, वर्ल्ड लीडर के सामने अपने संबोधन में उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति के लिए कश्मीर विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की वकालत की। अर्दुआन ने कहा कि दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए ये आवश्यक है कि कश्मीर में मुद्दे सहित सभी विवादों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और उसके जुड़े प्रासंगिक प्रस्तावों के दायरे में संवाद के माध्यम से हल किया जाए। इस पर अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इससे पहले तुर्की के ऐसे बयानों को पूरी तरह खारिज किया है। गौरतलब है कि तुर्की पहले भी कश्मीर मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है। Now let's just talk about the Northern Cyprus. जी हाँ, मतलब ये बंदा कश्मीर के बारे में बात करना चाहता है जो कि इसका कोई अरीना ही नहीं है, लेकिन इस बंदे को साइप्रस की जो नॉर्दर्न वाला जो पार्ट है उसको जो खुद ही मतलब सेल्फ डिक्लेयर्ड टर्किश नॉर्दर्न साइप्रस जिसने इसको डिक्लेयर कर दिया है, वो उसके बारे में बात नहीं करनी है। बेचारा साइप्रस की जो कंट्री है उसकी धरती उसकी जमीन ले ली इसने और खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि ये तो टर्की का पार्ट है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करनी है। उसके बारे में इसको यूएन में बात नहीं करनी है, इसको बात करनी है कश्मीर के बारे में। अरे भाई, तुम कश्मीर के बारे में भी बात कर, लेकिन जो तुम्हारे संगी साथी हैं वो क्या कर रहे हैं कश्मीर में ही वो भी बात करो। लेकिन यू नो व्हाट, दैट इज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ, मतलब इस दुनिया में इतना सारा चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, ईरान ने सबकी हेल हैसी तैसी, ईरान जो है वो हर जगह जो है वो चल रहा है, हूतियों ने ऐसी तैसी कर दी है, इनका तो खुद का एक बंदा है और जो कि ऑफकोर्स जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, मोहम्मद बिन सलमान जो कि अपेरेंटली क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, वो बेचारे खुद ही लड़ रहे हैं वहां। इनको नहीं लड़ना है क्योंकि मक्का समझौता करके इन्होंने कहा है कि अब हम समझौता कर चुके हैं, अब हम तुमसे 5 साल बाद मिलेंगे, समझौता कागजों पे हो गया, बाकी हम तुम कौन हम कौन हम नहीं जानते। लेकिन इसको कश्मीर के बारे में बात करनी है, that is like so funny. Sometimes I find these political leaders so funny. Like जो आप खुद कर रहे हो वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको किसी दूसरे के घर में जाके उसके दूसरे के पतीले में जाके झांकना है कि ओ पानी यहाँ साफ नहीं है। भाई तुम्हारा खुद का पानी साफ है? जी हाँ, I don't know what these political leaders think, but definitely hypocrisy, double standard, whatever you are gonna say. और मुझे तो समझ नहीं आता कि इनको बोलने कौन देता है। I don't know. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है। जी हाँ, ऑफकोर्स गाने भी चल रहे हैं और यहाँ पर अब जरा बात करते हैं मिस्टर ट्रंप की, क्योंकि मिस्टर ट्रंप बीइंग ट्रंप इज डूइंग समथिंग विच ओनली ट्रंप कैन डू। जी हाँ, सो ईरान को तबाह करने की धमकी देने के बाद बोले ट्रंप, उनसे अच्छी मुलाकात हुई है हमारी। जी हाँ, मतलब आई डोंट नो, यू नो व्हाट द थिंग इज, कि आप आजकल जब आप यू नो न्यूज के बारे में पढ़ते हो, अपार्ट फ्रॉम द वॉर सिचुएशन, एवरीथिंग हैज बिकम सो एंटरटेनिंग, सो एंटरटेनिंग। मतलब कहां से उठकर आए हैं ये सारे के सारे क्लाउन्स। यू नो व्हाट, दिस इज हमारी मतलब किस्मत भी खराब है इस वक्त, हम लोग जो है इस दुनिया में, जब ये लोग लीडर्स हैं, सो हम अपनी किस्मत को भी कोस सकते हैं इस मामले में। बट द थिंग इज कि क्या ही चल रहा है, मतलब क्यों ही चल रहा है। जी हाँ, अगेन अरशद वारसी का जो डायलॉग है जॉली एलएलबी में, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, वही याद आता है मुझे इनकी बात सुनकर। जी हाँ, तो सबसे पहले क्या हुआ ये जरा जानते हैं। सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मंगलवार को अमेरिका और ईरान के नेताओं के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक हुई है। बैठक में अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हुए हैं। वेल, जेरेड कुशनर उनके दामाद हैं, तो आपको पता है दामाद जी हमारे अंगना में पधार ही गए हैं, ये ऑलरेडी पधारे हुए अंगना में बैठ ही गए हैं यहाँ पे, क्योंकि जेरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, वो ज्यादा काम संभालते हैं उनके बेटे और उनके घर वालों के मुकाबले उनका। सो या यहाँ पे दामादगिरी पूरी तरह से चल रही है। सो ट्रंप ने बैठक को लेकर कहा कि एक बहुत अच्छी और उपयोगी बैठक थी, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि बैठक में ईरान की ओर से कौन कौन से नेता शामिल हुए थे। बैठक में शामिल रहे स्टीव विटकॉफ ने भी कहा कि वो फिलहाल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बैठक को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की। इससे पहले ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशियान के साथ मुलाकात की संभावना को लेकर कहा था कि ये वो शायद ऐसा कर सकते हैं, हालांकि दोनों पक्षों की ओर से ऐसी किसी मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की धमकी भी दी थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कहा कि अमेरिका के पास दो रास्ते हैं, ईरान के साथ समझौता करना या उसे खत्म कर देना। जी हाँ, इधर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजिशियान संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए तेहरान से न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं। जी हाँ, वहीं ईरान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है। ईरान ने पुष्टि की है कि न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर उसकी अमेरिकी प्रतिनिधियों से बैठक हुई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वक्काई ने कहा कि अमेरिकी पक्ष के साथ संपर्क कतर के मध्यस्थ के जरिए हुआ था। इस्माइल वक्काई ने कहा कि पिछले हफ्ते ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीति को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। इसके बाद न्यूयॉर्क में ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी पक्ष तक अपनी मांग स्पष्ट रूप से रख दी है। जी, अब यहाँ पे मांगे तो रख दी है, मांगे तो ये पिछले मतलब मुझे तो लगता है एक साल हो जाएगा, ऑफकोर्स फरवरी में, यानी कि फरवरी में ये हमला इनके द्वारा किया गया था, तब से चल ही रहा है तब से। बीच में थोड़ा सा शांत हो जाता है, लोगों को लगता है अरे वाह वाह वाह सब कुछ ठीक हो गया, मार्केट्स जो है वो ऊपर चली जाती है, फिर इनमें से किसी का दिमाग हिल जाता है और फिर से ये लोग बोलते हैं अरे हम तो फिर से हमला कर रहे हैं। हमला करने के बाद से ही फिर से तेल का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। सो बेसिकली कुछ लोग जो कि प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन इनको प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स हो रहे हैं, उनकी वजह से हम लोग महंगाई का ये खतरनाक सा और ये पूरा का पूरा जो है वो वजन जो है वो झेल रहे हैं। ऑल बिकॉज ऑफ दीज पीपल हु आर नॉट प्रेग्नेंट बट दे आर एक्टिंग प्रेग्नेंट बिकॉज अपेरेंटली उनको हॉर्मोनल इश्यूज हो रहे हैं। एंड गेस व्हाट, दे आर नॉट वुमेन। अगर वो वुमेन होते तो मुझे फिर भी समझ आता, दे आर ऑल मेन। ओह, आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सियाराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 04159526600, 04159526600।
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
6: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
7: अरे, इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
6: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
7: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
8: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और वो है हमारी नींद। जी हाँ, और हमारी नींद जो है वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बचपन से ही हम सबको पता है। ऑफकोर्स बचपन में जब हम सोने की कोशिश करते थे तो घर वाले हमें उठा देते थे, कहते थे जल्दी उठो, पढ़ाई करो, ऐसा करो वैसा करो। जी हाँ, उसके बाद बड़े होते हैं, उसके बाद बड़े होके हमें हमारा काम ही सोने नहीं देता है, हमको लगता है कि नहीं नहीं जल्दी उठना पड़ेगा, काम पर जाना है, कॉरपोरेट मजदूरी करनी है, सो यही सब चलता रहता है। जी हाँ, सो ये सब करते करते हमारी नींद जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द बचपन वाला पार्ट। तब हमें नींद इतनी ज्यादा प्यारी होती है और नींद से जो हमारा रिश्ता होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, तो कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर मेरे सामने एक मीम आता है, एक रील आती है और वो बड़ी दिलचस्प थी। उसमें लिखा हुआ था कि मुझे मेरी नींद से और नींद को मुझसे बहुत प्यार है। जी हाँ, मुझे मेरी नींद से और नींद को मुझसे बहुत प्यार है, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते के कुछ खिलाफ है। जी हाँ जी हाँ, आगे ये भी लिखा हुआ था कि मेरे घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं है। जी हाँ, तो खुश कौन से रिश्ते से नहीं है, किसी बाहर वाले से रिश्ते से नहीं, बल्कि नींद से। सो हमें नींद बहुत प्यारी है, नींद को हमसे भी बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो ये रिश्ता जो है वो घर वालों को पसंद नहीं आता, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे बॉसेस को ये रिश्ता पसंद नहीं आता, और बेसिकली ये रिश्ते के बीच में कोई ना कोई आता रहता है। आप मुझे बताइए कितना सीरियसली लेते हैं आप अपनी नींद को, बिकॉज नींद सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, किसी ने एकदम खूब कहा है कि नींद बहुत ज्यादा कीमती है। जी हाँ, नींद जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है, तभी तो इसको सोना कहते हैं। जी हाँ, आप लोग बोलो कि वाह, ये तो बात बन रही है ना, बन रही है ना, सोना कहते हैं क्योंकि सोना कीमती है, इसलिए नींद भी कीमती है। सो सोइए, जमकर सोइए, और कोई आपको उठाने की कोशिश करे तो उसको बोलिए अरे भागो यहां से। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

भाई सूट पहन के बन गया दूल्हा, और सूट पहन के बन गया दूल्हा, कल तक था जो नंगा भाई।

जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ टेक वर्ल्ड से भी एक बड़ी ही जबरदस्त खबर जो है वो बाहर आई है, एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। जी हाँ, अब आप लोग भी मार्केट्स में, शेयर मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो शायद ये चीज आप जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ टेक वर्ल्ड से भी एक बड़ी ही जबरदस्त खबर जो है वो बाहर आई है, एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। जी हाँ, अब आप लोग भी मार्केट्स में, शेयर मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो शायद ये चीज आपके काम आ सकती है, एंड आई एम टॉकिंग

छुड़ाने का प्लान कर लिया है। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे हाउ। जी हाँ, अभी कुछ वक्त पहले जब ट्रंप अपने डेलीगेशंस के साथ चाइना पहुंचे थे तो उसी में एनवीडिया के जो सीईओ हैं जेंसन हुआंग, वो भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन सामने से ही चाइना ने कह दिया था कि हम एनवीडिया की चिप्स लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एनवीडिया के कुछ चिप्स जो है वो ले लेंगे, अभी कुछ दिन पहले की बात है ये। लेकिन अब जो है चाइना ने कह दिया है कि नहीं, हम नहीं लेंगे, बिकॉज अपेरेंटली हमने खुद की चिप्स बनानी शुरू कर दिए। जी हाँ, आपने सही सुना। नाउ रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो चाइना के पास भर भर के पड़े हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो अपेरेंटली अमेरिका के पास थी, और एनवीडिया वाज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ चिप्स। वो अमेरिका के लिए और बाकी सारी कंट्रीज के लिए भी चिप्स बनाता है। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दैट चिप डज, तो लेट मी टेल यू। जी हाँ, वो चिप्स जो है वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, फिर चाहे वो ईवी है, फिर चाहे वो हथियार है, फिर चाहे यू नो व्हाट एनीथिंग यू नो रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उन बाकी सारी चीजों के, वो सब के सब जो हैं वो चलते हैं उन चिप्स से। सो अगर वो चिप्स नहीं होंगी तो वो सारे की सारी चीजें काम नहीं कर पाएंगी। बेसिकली उन्हें बनाना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसके लिए उन्हें चाइना की भी जरूरत थी, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल्स थे और उसका एक्सपोर्ट उसने ऑलमोस्ट बंद कर दिया था अमेरिका को धमकाने के लिए। एंड उसके बाद जो है फिर से ट्रंप जो है वो वहां पर पहुंचे थे अपने डेलीगेशन को लेके, ये दिखाने के लिए कि हम तो तुम्हारे साथ कारोबार करने आए हैं। जी हाँ, बट ऑफकोर्स चाइना बींग चाइना वॉज लाइक, ठीक है आए हो तो आओ, बैठो, खाओ पियो और जाओ, लेकिन हम सोचेंगे हमारे तुम्हारे साथ क्या करना है। लेकिन फाइनली अब चाइना ने कह दिया है कि हुवाई की चिप्स जो है वो उनके लिए काम करेगी। ऑल दो एनवीडिया की चिप्स और हुवाई की चिप्स का अगर मुकाबला किया जाए तो हुवाई की चिप्स जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, बट उन्होंने कह दिया है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम उस पर और अच्छे से काम करेंगे और हम उसे और भी ज्यादा परफेक्ट बना देंगे। सो वी डोंट नीड योर चिप्स एनवीडिया एंड यूएसए। सो या दैट्स व्हाट हैपेंड, और ये अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब ऐसा हुआ है। सो चाइना ने अपने आप को जो एक चीज थी जहां पर उन्हें जरूरत थी यूएस की, वो भी अपने आप को उससे अलग थलग कर लिया, क्योंकि अपेरेंटली दे डोंट इवन नीड चिप्स फ्रॉम अमेरिका नाउ, बिकॉज दे थिंक दे कैन मेक इट जस्ट लाइक अमेरिका डज। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
7: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। आई होप आप भी उसके लिए रेडी हो, क्योंकि अब पूरी तरह से पुराने गाने हम प्ले करने वाले हैं, पुराने किस्से आपको सुनाने वाले हैं और एक खूबसूरत सा प्रोग्राम आपके लिए लाने वाले हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपकी कोई फरमाइश है तो जल्दी से भेज दीजिए, आपके पास नंबर है। और यहां पर हमारी शुरुआत होने वाली एक बहुत ही खास गाने के साथ। एंड इतनी ज्यादा मैं इसके बारे में इसलिए बोल रही हूं खास, क्योंकि ये गाना सच में मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, और सिर्फ मेरे ही नहीं, बहुत सारे लोगों के दिलों के बहुत ज्यादा करीब है। नॉट जस्ट द सिंगिंग, जी हाँ, जो कि किशोर दा ने की है, बल्कि वो जबरदस्त कॉम्पोजिशन जो कि अगेन जो है आरडी बर्मन ने दी है। सो ये जो बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है आरडी बर्मन का और किशोर दा का, ये आपको इसमें सुनने को मिलने वाला है। सो आपको समझ आ ही गया होगा कि शायद मैं बात कर रही हूँ कल्ट फेवरेट सॉन्ग हमें तुमसे प्यार कितना की। वेल, अगर आपने ये गेस किया है तो आपने सही गेस किया है। ये रहा गाना आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज एक बहुत ही खास इंसान का जन्मदिन भी है। जी हाँ, और क्या आप गेस कर सकते हो किसकी बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ? जी हाँ, गेस कीजिए। वेल, वो एक ओजी विलन जो है वो रहे हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि एक पिक्चर के दौरान जब वो हेमा मालिनी के साथ शूटिंग कर रहे थे और उनका एक ऐसा सीन वहां पर दिखाया जाना था जहां पर वो उनके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पर धर्मेंद्र खड़े थे, और उस पिक्चर की शूटिंग के दौरान ही, मतलब उस सीन में ही धर्मेंद्र भी थे और वो उनको दूर से देख कर जल रहे थे। क्या आप गेस कर पाए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? जी हाँ, सोचिए सोचिए सोचिए तो सही। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द ओजी विलन प्रेम चोपड़ा की। जी हाँ, प्रेम चोपड़ा की शुरुआत जो है वो एग्जैक्टली विलन के तौर पर नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें वो विलनियस कैरेक्टर्स में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ नॉर्मल काम नहीं किया बल्कि क्या ही लाजवाब काम किया, मतलब एकदम खास काम किया। और प्रेम चोपड़ा की शुरुआत जो है वो जितेंद्र के साथ हुई है, और इसके बारे में उन्होंने किस्सा भी शेयर किया। लेकिन सबसे पहले प्रेम साहब, हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। हम यही कहेंगे कि ये साल आपके लिए अच्छा रहे, आप हेल्दी रहें, खुश रहें, और ऐसे ही अपने जितने भी जूनियर्स हैं उनको इंस्पायर करते रहें, बिकॉज वी लव यू। जी हाँ, ये गाना एक और मैं आपको सुनाने वाली हूं, और फिर मैं आपको सुनाने वाली हूं वो किस्सा कि कैसे जितेंद्र और प्रेम चोपड़ा ने एक साथ शुरुआत की और वो कितनी फनी थी। जी हाँ, गाना है तुम अगर साथ देने का वादा करो आप सबके लिए।

दोस्तों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गाना है, लेकिन ये गाना जो बहुत ही उम्दा सिंगर महेंद्र कपूर जी ने जी हाँ। नाउ महेंद्र कपूर जी की सिंगिंग को ऐसा कहा जाता था कि उनकी आवाज ऐसा नहीं मानती। जी हाँ, मैं ऐसा नहीं मानती और मैं बिल्कुल ऐसा मानने के लिए तैयार भी नहीं हूँ, क्योंकि रफी साहब की आवाज का जो टेक्सचर था ना, वो बड़ा ही प्यारा सा था। मतलब मैं ये आवाज जो है वो अच्छी नहीं थी, वो भी अच्छी है, ये मतलब कितना प्यारा सा गाना उन्होंने गाया है, आवाज डिफरेंट थी। रफी साहब की आवाज सीधा आपके दिल में जो है वो ऐसे पहुंच जाती थी, मतलब अगर आप दरवाजा बंद करके भी बैठे हो तो भी वो दरवाजा खोल के आएगी, आपके दिल में घुस जाएगी सीधा और वहां घर कर जाएगी। महेंद्र कपूर साहब की आवाज अच्छी थी, प्यारी थी, बट रफी साहब की आवाज इट इज नो कंपेरिजन। सो जो भी कहते हैं कि महेंद्र कपूर साहब की आवाज बहुत ज्यादा मिलती थी रफी साहब की आवाज से, एंड दैट वॉज द रीजन कि बहुत सारे गाने जब रफी साहब नहीं गा पा रहे थे, उनका बहुत ज्यादा काम जो है वो चल रहा था, और उसकी वजह से कुछ गानों के लिए महेंद्र कपूर को वहां पर चुना जाता था कि ओके, अगर रफी साहब से गाने नहीं गाए जा रहे हैं तो महेंद्र कपूर से हम गाना गवा लेंगे, ताकि एटलीस्ट वैसा सा कोई वॉइस टेक्सचर जो है वो लोगों को सुनने को मिल जाए। बट अगेन मैं कहूंगी कि ऐसी बात ही नहीं है, मतलब इन दोनों की वॉइस बहुत ज्यादा अलग है, मीठी है पर अलग है। जी हाँ, यहाँ पर अब जरा बात करते हैं मिस्टर प्रेमचंद जी की। जी हाँ, हमारे फेवरेट विलन, और उनकी हंसी जो है वो आज भी मुझे डराती है, लेट मी टेल यू। जी हाँ, ये किस्सा जो है वो जितेंद्र ने शेयर किया है, और जितेंद्र कहते हैं कि उषा सदन जो है एक बिल्डिंग हुआ करती थी, उसके तीन विंग्स थी, जी हाँ, ए बी सी, और ये वही वक्त था जब मैं भी कोशिश कर रहा था फिल्मों में आने की, और प्रेम चोपड़ा भी आने की कोशिश कर रहे थे फिल्मों में, तो मैंने वहां पर सी विंग में मैं रहता था और प्रेम चोपड़ा साहब रहते थे ए विंग में। जी हाँ, अब जब भी हम एक दूसरे को देखते थे तो हम फटाफट पर्दा बंद कर देते थे और फटाफट नीचे आ जाते थे अपनी गाड़ियों के पास, जैसे हमें बहुत ज्यादा काम है। अब आपको ये भी बता दें कि जितेंद्र कहते हैं उस वक्त हमारे पास गाड़ी तो थी दोनों के पास, लेकिन हमने इंस्टॉलमेंट्स पे ली हुई थी और महीने में 32 दिन दोनों ही बेकार रहते थे। जी हाँ, एंड ये सुनकर ही सबके सब लोग जो है वो हंसने लग गए, मतलब महीने में 30 दिन होते हैं, 32 दिन होते हैं, लेकिन 32 दिन अगर बेकार है तो आप सोचिए कि सब कुछ बेकार ही चल रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, वेल आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट, लेकिन पहले हम आपको एक और खूबसूरत सा गाना सुनाएंगे जिसको फरमाइश किया गया है, नहीं बल्कि रेकमेंड किया गया है हमारे बहुत ही खास लिसनर, नॉट जस्ट लिसनर बट हमारे बॉस मिस्टर जतिश पूरन जी की तरफ से। गाने का नाम है आज मुझे कुछ कहना है। अरे वाह, क्या बात है, कुछ कहना है तो जरूर कहिए। मुझे लगता है कि अगर किसी को कुछ कहना है तो उसे कहने का पूरा मौका देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही प्यारा सा गाना आपने यहाँ पर हमें रेकमेंड किया है, और आपके रिकमेंडेशंस जो हैं वो हमेशा बहुत ही कीमती होते हैं और वो लिटरली हमारी प्लेलिस्ट का पार्ट बन जाते हैं हमेशा के लिए, तो थैंक यू सो मच। और मेरे बाकी के लिसनर्स, देखा मैं कहती हूँ ना कि आप सबकी फरमाइशें भी उतनी ही दमदार होती हैं। सो ये रहा सर आपका गाना, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या हुआ।

जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ये खूबसूरत सा गाना आपने सुना और मैं तो कहती हूँ ना, ये गाने मेरे को, ये गाने ऐसी ऐसी भावनाओं में ले जाते हैं, मतलब ऐसी भावनाएं जो है वो जगा देते हैं हमारे मनों में कि क्या ही कहा जाए। जी हाँ, तो जैसे मैं आपको सुना रही हूँ किस्सा जितेंद्र ने सुनाया है प्रेम चोपड़ा के बारे में, और प्रेम चोपड़ा जी का जन्मदिन है आज, तो ऑफकोर्स हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। सो ये किस्सा वही है कि कैसे जितेंद्र और प्रेम चोपड़ा ने एक साथ अपने करियर की शुरुआत की। अब वो शुरुआत से पहले जब वो ऑडिशन दे रहे थे तो उनके पास काम होता नहीं था, वो दोनों जिस बिल्डिंग में रहते थे वो भी एक साथ ही थी। जी हाँ, एक ही बिल्डिंग की तीन विंग्स में से एक एक में रहता था, दूसरा दूसरी में रहता था, और दोनों ही एक दूसरे को देखकर ऐसे ऐसे नाटक करते थे, ऐसे एक्टिंग करते थे जैसे कि हमारे पास बहुत ज्यादा काम है। नीचे जाके अपनी गाड़ियों में बैठते थे और फटाफट चले जाते थे। जी हाँ, जितेंद्र कहते हैं, और जब हम एक दूसरे को फिर से मिलते थे तो वो तब नहीं मिलते थे जब हम एक दूसरे के साथ सेम बिल्डिंग्स में रहते थे। हमारा मिलना होता था फिर उन स्टूडियोज में, उन फिल्म स्टूडियोज में जहां प्रोड्यूसर्स बैठे होते थे, क्योंकि हम ऑडिशन देने के लिए पहुंचते थे, हम काम मांगने के लिए पहुंचते थे। जी हाँ, तो हम एक दूसरे को देखते थे कि हम कितनी नौटंकी करते हैं, कि हमारे पास कितना काम है, यू नो, हम कितने सुपरस्टार हैं, लेकिन यहां पर आके काम तो मांगना ही पड़ता है दोनों को। तो जितेंद्र कहते हैं, ये सब देखते देखते देखते प्रेम चोपड़ा ने एक दिन कह ही दिया, अरे भाई देखो जितेंद्र, तुम भी यहां पर काम के लिए आए हो, मैं भी यहां पर काम के लिए आया हूं। अब दोनों को काम चाहिए, काम है नहीं दोनों के पास, तो ऐसा करते हैं दोनों ही एक साथ ढूंढते हैं, और ऐसा करते हैं एक ही गाड़ी में जाते हैं तो एटलीस्ट पेट्रोल तो नहीं लगेगा। जी ऐसे दो गाड़ियों में जा रहे हैं तो दो गाड़ियों का पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक ही गाड़ी में जाते हैं, और हमें दोनों को ही पता है कि हमारे पास काम नहीं है, सो काम ही मांगना है तो एक ही गाड़ी में चलकर मांगते हैं। जी हाँ, और ये सुनते ही जितेंद्र जो है वो कहते हैं, हाँ ये तो सही है, ये तो सही है। मतलब आप खुद सोचिए कि स्टार्टिंग में एक दूसरे को ऐसा टेंट्रम दे रहे थे कि यू नो व्हाट, कितना काम है मेरे पास, लेकिन बाद में लाइन पे आ गए। तो जितेंद्र कहते हैं कि प्रेम चोपड़ा के साथ उनकी ट्यूनिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही, वो जो एक बड़ा बेसिक सा टाइम होता है जहां पर एकदम शुरुआत से शुरुआत होती है, वो एक दूसरे के साथ उन्होंने उस वक्त को काटा था। जी हाँ, और वही वक्त वाले लोग जो है वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, लेट मी टेल यू। जी हाँ, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल यानी कि थर्सडे को। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वेल ऑफकोर्स आपको मजे करने हैं, किताबें पढ़नी है, गाने सुनने हैं, खाना खाना है, आई मीन वट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है वो कीजिए। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि बहुत ही खूबसूरत है।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: I am your only Adam.
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था?

क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ताजे हर कोई जान

0: होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेनोरिटा।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार। सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ब्रिस्बेन शहर में $1 मिलियन की लागत से सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं AAFL ग्रैंड फाइनल से पहले ब्रिस्बेन स्टार लाची नील पर सस्पेंशन। जी हाँ, ब्रिस्बेन लायंस के स्टार खिलाड़ी लाची नील को एक मैच का बैन झेलना पड़ा है। इस निलंबन की वजह से उनके आगामी AAFL यानी कि AFL ग्रैंड फाइनल में खेलने को लेकर संशय बना हुआ है। वहीं उत्तरी उपनगरों में आधुनिक पुलिस पेट्रोलिंग तकनीक। सिटी काउंसिल और क्वींसलैंड सरकार ने मिलकर ब्रिस्बेन के उत्तरी उपनगरों मिचेल्टन, कैपेरा और एडरले में आधुनिक तकनीक वाले सुरक्षा कैमरे और सर्विलांस सिस्टम तैनात किए हैं। वहीं लोकल बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट्स में सुधार की योजना। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने व्यस्त समय में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए नए बस शेड्यूलिंग प्लान का पर काम शुरू किया है। शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों को जोड़ने वाले मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया गया है। वहीं ब्रिस्बेन पार्क्स में स्प्रिंग कम्युनिटी क्लीन अप ड्राइव। क्वींसलैंड में बसंत के मौसम की शुरुआत के साथ ही ब्रिस्बेन के प्रमुख पार्कों और नदी के किनारे सफाई का सामुदायिक अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ब्रिस्बेन में कला और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का आयोजन। शहर के कल्चरल सेंटर और साउथ बैंक क्षेत्र में इस हफ्ते से स्थानीय कलाकारों की नई कला प्रदर्शनियां और लाइव स्ट्रीट म्यूजिक प्रोग्राम्स शुरू हो रहे हैं। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले वायुसेना का जोधपुर में बड़ा सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2026। भारतीय वायुसेना जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर अपना सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति 2026 शुरू करने जा रही है। इस अभ्यास में दुनिया भर के लगभग 40 देश हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की पार्टनरशिप 2032 तक बढ़ी। जी हां, अंतरिक्ष की दुनिया से भारत के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने अपने अंतरिक्ष सहयोग समझौते को साल 2032 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। दोनों एजेंसियां चंद्रयान 5 और आदित्य L1 जैसे बड़े स्पेस मिशन में एक दूसरे को तकनीकी और ग्राउंड सपोर्ट देती रहेंगी। वहीं चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट अपडेट अभियान। चुनाव आयोग ने देश भर के 30 राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट की जांच और सफाई का बड़ा अभियान चलाया है। इस प्रक्रिया के तहत फर्जी, दोहरे और स्थानांतरित वोटरों के नाम सूची से हटाए गए हैं। वहीं प्राकृतिक हीरे की कीमतों में 30-40% की गिरावट। अगर आप डायमंड ज्वेलरी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार प्राकृतिक हीरों के दामों में साल 2021 के मुकाबले 30-40% की भारी गिरावट आई है। वहीं राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन की शुरुआत। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है और राजस्थान के रावतभाटा में स्थित एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की 8वीं यूनिट में शुरुआती ईंधन लोड कर दिया गया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना 700 मेगावाट क्षमता का रिएक्टर है। इसके साथ विदेश मंत्री डॉ SJ शंकर का वैश्विक मंच पर बड़ा बयान। विदेश मंत्री डॉ SJ शंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया के सामने आ रहे 4 बड़े संकटों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने ईंधन, भोजन, उर्वरक और वित्त यानी 4F की किल्लत पर चिंता जताते हुए कहा है कि विकासशील देशों को इन समस्याओं से बचाने के लिए दुनिया के बड़े देशों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इसके साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं जहां वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें यानी कि 81st सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। हालिया तनावपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच ईरानी प्रतिनिधिमंडल का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आईएमएफ ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में सुधार को सराहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की टीम ने श्रीलंका के अपने दो हफ्तों के दौरे के बाद रिपोर्ट जारी की है कि आईएमएफ का कहना है कि कठिन आर्थिक सुधारों के बाद अब श्रीलंका की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे स्थिर हो रही है। वहीं व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण के दौरान ब्रॉडकास्ट विवाद। साउथ लॉन में नए हेलीपैड के उद्घाटन के दौरान एक अनोखी घटना देखने को मिली, जब प्रमुख मीडिया नेटवर्क द्वारा कवरेज ना किए जाने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भाषण कुछ देर के लिए इनऑडिबल हो गया। वहीं सिविल एविएशन अथॉरिटी की बुश फायर सीजन को लेकर सलाह। ऑस्ट्रेलिया और आसपास के महाद्वीपों क्षेत्रियों में बुश फायर यानी जंगलों की आग के मौसम को देखते हुए सिविल एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी ने एयरलाइंस और पायलटों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं दुनिया भर में नए मल्टी कैंसर ब्लड टेस्ट का सफल ट्रायल। मेडिकल साइंस की दुनिया से एक बहुत राहत भरी खबर आई है। एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में एक नए मल्टी कैंसर ब्लड टेस्ट ने शुरुआती चरण में 17 अलग अलग प्रकार के कैंसर का सटीक पता लगाने में सफलता हासिल की है। वहीं प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण पर नई रिसर्च रिपोर्ट। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने माइक्रोप्लास्टिक को लेकर एक नई चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पीने के पानी और खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक के सूक्ष्म कण न केवल इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर डाल रहे हैं। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले खेल जगत की ये बड़ी खबरें। एशियाई खेल 2026 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड मेडल। जी हां, एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया है। वहीं स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, बनाए 11,000 रन। भारतीय महिला टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। वे महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। वहीं बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने पदक पक्का किया। जापान के नागोया में चल रहे एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने मेजबान जापान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने लिया संन्यास। क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर आ रही है। इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज मार्क वुड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 36 साल के मार्क वुड पिछले कुछ समय से घुटने की चोट से जूझ रहे थे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
4: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
4: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
5: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
6: तो ओम्सऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे, ओम्सऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
6: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
7: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज।
8: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
9: अरे, इसमें कंफ्यूजन क्या? प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
8: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
9: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
10: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
11: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
10: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
11: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
10: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
11: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
12: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
13: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atan yaar, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: अगर हमारी शादी नहीं हुई ना, तो मैं मर जाऊंगी।
5: अगर तुम मर भी गई ना, तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।

0: ऐ मेरी हमरा मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे तेरी न्यूज स्टेशन रेडियो बसवाने वन सन वन एम जी अच्छे संदेश अलग दिन से बने हुए हो। होप तुसी इन्हां गीतां नूं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैगे हो। तो इसे तरीके दे नाल सोहणे सोहणे गीत मैं अगे भी तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी, नाले करदी रहूंगी गल्लां। तां हुण गल्लां करिए ना जे आपां तां बॉलीवुड दे विच बहुत कुछ खास हुंदा, हॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड। तां मैनूं इंटरस्ट बॉलीवुड दे विच है क्योंकि बॉलीवुड दीआं फिल्मां ही इन्नीआं सोहणीआं आ रहीआं हैगीआं ना। तां सोचा के तुहानूं भी दस्सां, देखो पिछे चलदे हैगे आ 1780s 90s अपनी मांग भर लेंदियां सी। राजेश खन्ना तो बाद धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती नूं भी दर्शकां ने खूब प्यार दिता। पूरे तीन दहाकियां तक इन्हां सितारियां दा बॉलीवुड इंडस्ट्री विच जलवा रहा। इस विचों सिर्फ दो स्टार्स दे बेटे बेटियां नूं ना इंडस्ट्री विच सफलता मिली है। ते ओ सुपरस्टार ते उन्हां दे बेटे कौन ने, उन्हां बारे दसूंगी तुहानूं, पर पहला सुणाउनी है गीत।

0: कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है. असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हां. असीं होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां. स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी. असीं तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो. डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित. ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.

जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो तो सब तो पहला गल करते हैं बॉलीवुड दे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना दी। तो देखो राजेश खन्ना दा असल नाम ना जतिन खन्ना सीगा। राजेश खन्ना दे चेतन आनंद दी फिल्म आखरी खत नाल उन्होंने बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सीगा। उन्होंने शक्ति सामंत दी फिल्म आराधना फिल्म नाल रातों रात स्टारडम हासिल किया सीगा। तो राजेश खन्ना ने ना 1969 यानी कि 1969 तो लैके 1964 खन्ना सीगा। राजेश खन्ना दे चेतन आनंद दी फिल्म आखरी खत नाल उन्होंने बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सीगा। उन्होंने शक्ति सामंत दी फिल्म आराधना फिल्म नाल रातों रात स्टारडम हासिल किया सीगा। तो राजेश खन्ना ने ना 1969 यानी कि 1969 तो लैके 1974 यानी कि 1974 तक

जी अनुजी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी वनसन ओआर एम ते जी आर जी संदेश अलग दिन से बने हुए। देखो राजेश खन्ना दिया दोनों ही बेटियां ने बॉलीवुड विच किस्मत आजमाई, दोनों नू निराशा भी हाथ लगी। राजेश खन्ना की वड्डी बेटी ट्विंकल खन्ना ने 1995 विच बॉबी देओल दे नाल बरसात फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया। डेब्यू फिल्म तो सुपरहिट रही पर इस तो बाद आने वाली मूवी फ्लॉप रही। ट्विंकल खन्ना ने जान दिल तेरा दीवाना इतिहास इंटरनेशनल खिलाड़ी जुल्मी बादशाह मीला वर्गिया फिल्मों में काम किया। ट्विंकल की भैन रिंकी खन्ना का करियर भी बॉलीवुड विच कुछ खास नहीं चल पाया। रिंकी खन्ना ने प्यार में कभी कभी मुझे कुछ कहना है वर्गिया फिल्मों में काम किया पर तकदीर नहीं बदली। ते फिर तकदीर जदो नहीं बदली ना ता फिर जल्दी ही उन्होंने बॉलीवुड तो विदा भी ले लिया ते ब्याह करवा लिया। ट्विंकल खन्ना ने जिते अक्षय कुमार दे नाल ब्याह कीता ता उधर रिंकी खन्ना ने बिजनेसमैन समीर सरन दे नाल ब्याह करवाया।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बन द्वारा अधिकारित।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसानी 101 एम ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो हुण गल करदे हैं कि 70 ते 80 यानी कि 70s ते 80s दहाके दे सब तो वड्डे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन दी महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक ने 2000 रिफ्यूजी फिल्म नाल करीना कपूर के नाल बॉलीवुड विच डेब्यू किया। जेबी दत्ता के निर्देशन विच बनी यह फिल्म कुछ खास नहीं कमाल कर सकी। अभिषेक बच्चन के करियर की शुरुआत दी 14 फिल्मा फ्लॉप या डिजास्टर रही। उधर 2004 विच धूम फिल्म तो उन्होंने सफलता का स्वाद चक्या है। फिर बंटी और बबली, धूम टू, गुरु हिट रही, धूम थ्री, हैप्पी न्यू ईयर, हाउसफुल थ्री वर्गे मल्टी स्टारर फिल्मा विच उन्हां दा काम सराया गया, पर वह सोलो हिट देण विच फेल रहे। अभिषेक बच्चन भी अपने पिता वर्गे स्टार नहीं दोहरा पाए, पर अज भी स्ट्रगल कर रहे ने।
1: एक दो गल्लां करनी सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगी, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां।

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड

काम काट। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 एम ते जी आज संदेश अलग दिनाल से बने हुए हैं। उस तो बाद 70s 80s दे दहाके एक होर सुपरस्टार की गल कर लैने आ, वह है जितेंद्र। जितेंद्र के बेटे ने तुषार कपूर, उन्होंने गल करते हैं। तुषार कपूर ने बॉलीवुड विच मुझे कुछ कहना है दे नाल डेब्यू किया। पहली फिल्म तो सफल रही पर फिर किस्मत ने साथ नहीं दिता। तुषार कपूर की एक्टिंग भी दर्शकों लुभा नहीं सकी। क्या दिल ने कहा जीना सिर्फ मेरे लिए कुछ तो है ते ये दिल गायब खाकी क्या कूल है हम गोलमाल लव स्टोरी क्या लव स्टोरी है शूट आउट एट लोखंडवाला बहुत सारिया फिल्मा कीतिया पर कोई फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी। मल्टी स्टारर दे विच उन्हां नूं सराया गया पर उही गल ना अपने दम ते ओ वी सोलो हिट नहीं दे पाए ते जल्द ही ओ साइड हीरो बन के रह गए।

0: जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: सुहाना साहब तो रब सीगा जानू कले कले खाब तो रब सीगा जानू कले कले खाब तो नी मैनू सारा कुछ मिले आ सुहाना साहब तो।
1: Yes, welcome back. एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101 एम ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होयो। देखो जितेंद्र दी एक टीवी हैगी है, बेटा नहीं कमाल कर सकिया, बेटी ने कीता हैगा एकता कपूर। जी हाँ, एकता कपूर टीवी दी दुनिया दी क्वीन कहलाई जांदी है। उन्होंने तुषार कपूर तो ज्यादा उन्होंने सफलता मिली है। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म कंपनी के बैनर तले एक तो वध के एक सीरियल प्रोड्यूस कीते। एकता कपूर ने हम पांच, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की, कुसुम कहीं तो होगा, कसम से पवित्र रिश्ता बड़े अच्छे लगते हैं, ते जोधा अकबर वर्गे कई सीरियल्स बनाए। तुषार कपूर ते एकता कपूर ने ब्याह नहीं किया। तुषार कपूर जो 2016 विच सैरोगेसी ते आईवीएफ के जरिए एक बेटे के पिता बने, सिंगल फादर बने। तुषार ने अपने बेटे का नाम लक्ष्य रखा है। तुषार कपूर की भैन एकता कपूर ने भी 27 जनवरी 2019 विच सैरोगेसी के जरिए बेटे रवि कपूर नूं जन्म दिता। सिंगल मदर बनी उन्होंने अपने पिता जितेंद्र के असली नाम ते बेटे का नाम रखा।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: सारा कुछ मिले सुहाना साहब तो
1: जी आरू जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपनी चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो सोने वन सरो वाले ते जी आर छे संदेश अलग दिन से बने हुए। देखो 70s 80s दे सुपर स्टार्स दे विच सिर्फ धर्मिंदर ही इकलौते अजिहे स्टार है कि ने जिन्हां दे वड्डे बेटे सनी देओल दा करियर बेहद सफल रहा। सनी देओल ने 1983 दी बेताब फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सी। फिर अर्जुन घायल दामिनी घातक बॉर्डर गदर एक प्रेम कथा गदर टू बॉर्डर टू वर्गियां ब्लॉकबस्टर फिल्मां दित्तियां। सनी देओल ने अपने दम ते सोलो हिट दित्तियां ने। उधर उन्हां दे भरा बॉबी देओल ने करियर दी शुरुआत 1995 विच बरसात फिल्म नाल कीती सी। मूवी सुपरहिट रही फिर सोल्जर गुप्त वर्गियां हिट फिल्मां दित्तियां पर इस तों बाद उन्हां दे नसीब उन्हां तों गुस्से हो गया। बॉबी ने फ्लॉप फिल्मां दी लाइन चुन ली। पूरे 15 साल फ्लॉप करियर दा दौर चुनिया। 2019 विच उन्हां दी किस्मत पलटी ते ओ नेगेटिव रोल्स करन लग गए। एनिमल मूवी विच उन्हां दा छोटा जिहा रोल दर्शकां दे दिल नूं छूकिया।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: For aap sun rahe hain Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm Madhvi for the Meat Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, main hoon Tulsi Kumar. Aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan. Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

देखो वेला हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन दा, पर एक होर सुपरस्टार दी गल करनी रह गई सी, तां सोचा उन्हां दी गल भी जरूर कर लां। ते उन्हां दी गल कर लैनी आ जी। तां सुपरस्टार ऋषि कपूर 1973 विच आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी दे नाल डेब्यू कीता सी। उन्हां ने अपने करियर दे विच बहुत शानदार फिल्मां दित्तियां सी। अपनी छवि चॉकलेटी रही हैगी उन्हां दी। ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने अपने पिता की विरासत नूं अगे संभाल लिया है। वह अपने पिता नाल तो दो कदम अगे निकल गए। रणबीर कपूर ने 2007 विच सावरिया मूवी दे नाल डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप रही पर उन्होंने संघर्ष किया, फिर बहुत सारिया फिल्मा कीतियां, ब्लॉकबस्टर रही। रणबीर कपूर के टैलेंट से कामयाबी पूरी इंडस्ट्री ने मान ली हैगी, असी भी मान गए हैगे। ताई कुछ सितारे हैगे ने, उन्होंने बच्चे ने जिन्होंने की किया थानू दस्या है। बाकी तुसी की किया सारा दिन तुसी जरूर दस्या करो, साडे नाल जुड़ते रह करो। रेडियो बिरसोनी 107.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, बिरसोनी @bisoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा भी अपनाउणा अपना लो, साडे नाल पता जरूर करते रह करो। बाकी अपना ख्याल रख्या करो, ते मैं तां इही कहना कि कल करांगे मुलाकात। रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: Amor.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
5: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
5: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: से ऑनलाइन और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
0: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्सऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्सऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

ना बदला मैं ना बदला वो ना बदला तू, अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कमबख्त ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम।

0: 뭐가?
1: यूएस के इलेक्शन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आया तो सबने बोला एक के होयो भाया नाम से डोनाल्ड

0: तुम्हारे साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर एथलीट वीले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: 01-022-602-0411-022-602 or email me at royalindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं और आज जो हम करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर मैं सताक्षी आज एक नई सुबह में आपके साथ फिर से हूँ। सुप्रभात आप सभी को। अक्सर रातें हम सबके जीवन की अंधेरी होती हैं। बहुत सारी उम्मीदें पिछली रातों में आपकी भी पूरी कहाँ हुई होंगी, लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह एक मौका होता है आपकी जिंदगी में जो कल नहीं हासिल किया उसे पाने का। हर सुबह हमारा एक नया जन्म होता है। कल जो गलतियां हुई हैं उन्हें भूल जाइए। आज से अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। अगर आपने अपनी गलतियों को रियलाइज कर लिया है, जो कदम आपने उठाए थे उनमें जो कमी रह गई थी उन कमियों को रियलाइज कर लिया है, तो ये मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा या आप हार गए या आपसे गलती हो गई। वो गिल्ट आज खत्म कर दीजिए। आज एक नया जन्म है आपका और आज एक नई शुरुआत कीजिए। आइए इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं हमारे जीवन आधार की भी, रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर, और आगे बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ।

रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार। अक्सर आप अपने जब जिंदगी की कोई परेशानियां होती हैं या जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है तो आप दूसरों को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं, ऊपर वाले को दोष देते हैं, अपने आसपास के लोगों को दोष देते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो आप आज करते हैं, जो आपके कर्म है, वही कल आपकी रियलिटी बनते हैं, और आप जो दूसरों के साथ करते हैं, जो आप इस यूनिवर्स को देते हैं, वही रिफ्लेक्ट होकर आपके पास वापस आता है। जैसा आपने किया है वैसा ही आपके पास आ रहा है, और जब वही आपके पास आ रहा है तो किसी और से नाराज क्यों होना है? फिर चाहे ईश्वर हो या फिर कोई इंसान हो, गलती उसकी नहीं है। क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी जिंदगी में अंधेरा खड़ा नहीं कर सकती। मुश्किलें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन अगर वो आपकी जिंदगी में ठहर रही हैं या आपको बार बार नुकसान पहुंचा रही हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वो आपके कर्मों का ही परिणाम है। आइए इसी बात को सोचते हुए जरा इस पे गहराई से मंथन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं जीवन आधार।

0: आधार को एक बार फिर से आप सोच रहे हैं आज, समझ रहे हैं आज, और इस जीवन के आधार पर ही आप आगे बढ़ रहे हैं। अपनी जिंदगी का ये जो नया दिन है, जो नई शुरुआत है, इसमें अपने जीवन के बेस को समझकर उसे संवारने की कोशिश का नाम ही तो जीवन आधार है। इसी बात पर, इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं अपने सफर में। सुनते रहिए जीवन आधार और सुनिए अभी ये अगला गीत।
1: जीवन

शांति, पीस। आज पूरा विश्व यही तो चाहता है कि पीस हो। लेकिन विश्व को, संसार को, देशों को छोड़ दीजिए। क्या हमारे और आपके मन में है ये पीस? क्या हमारा और आपका मन शांत है? हम सबका मन अशांत है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इस शांति से हम दूर ही हैं। ये शांति हमारे जीवन में आ ही नहीं रही है। तो ऐसा क्या करें कि जीवन में ये शांति बस जल्दी से आ जाए? इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन उसे करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, जिस समय हमारा मन दूसरों के लिए शुभ सोचना आरंभ कर देता है, उसी वक्त, उसी समय हमारे जीवन में शांति आ जाती है। हमारी परेशानी ये है कि हम ना तो दूसरों को अपने से आगे निकलते हुए देख सकते हैं और ना ही उनके बारे में अच्छा सोच सकते हैं। अच्छा सोचिए, आपका मन अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, तब तो यकीन मानिए आपके मन की शांति को कोई छीन ही नहीं सकता है आपसे। बहुत पीस में रहेंगे आप। आइए इस बात के साथ आगे बढ़ूंगी एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी और रहिए सताक्षी के साथ।

कभी कभी ना आपको एक पल के लिए दुनिया से खुद को एकदम अलग करना पड़ता है, एकदम अलग, ताकि आप खुद को रिसेट कर सकें। और इसे करने के आज के वक्त में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुश्किल जरा ज्यादा है, क्योंकि उन चीजों से आप अलग नहीं रह सकते जिनको आपको छोड़ना है, जिनसे आपको दूर होना है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन। बस एक छोटा सा काम कि आप कुछ दिनों के लिए किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां आप खुद के साथ आत्ममंथन कर पाएं, आप मेडिटेशन कर पाएं। और इसको लेकर आज कई सारे आश्रम भी हैं, कई सारे जगह भी हैं, कई सारे मेडिटेशन सेंटर्स भी हैं। आप अगर वहां जाकर सबके साथ मिलकर मेडिटेट करना चाहते हैं, खुद पर ध्यान देना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। या फिर आप यूं ही अपना बैग उठाइए और निकल पड़िए प्रकृति के गोद में, प्रकृति के नजारों का मजा लेते हुए, और खुद को जानने की, खुद को समझने की एक छोटी सी कोशिश कर डालिए और उसके बाद वापस लौटिए। बस शर्त यह है कि आपको बाकी की दुनिया से एकदम कट जाना है, आपके मोबाइल फोन से भी, क्योंकि मन की शांति भंग वहीं पर होती है जहां आपके हाथ में फोन और दुनिया के साथ कनेक्शन आ जाता है ना। तो अगर आप रीसेट अपनी जिंदगी को करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के कुछ हल ढूंढना चाहते हैं, तो करके देखिए। और सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर जीवन आधार। आइए आगे बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ।

जीवन के आधार को समझने का ये संकल्प है हमारा और इसीलिए हम हर रोज रेडियो प्रसारणी के इस खास सफर जीवन आधार में आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपको भी अपने साथ जोड़कर जीवन में साथ साथ आगे बढ़ने का जो हमारा वादा है आपसे उसे निभा रहे हैं। इसे एक और गीत के साथ अभी बढ़ूंगी आगे। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए मेरे साथ।

अभी अजीब है ना दोस्तों, दुख से बचने के लिए लोग अक्सर सुख से बचते हैं। दुख जब जिंदगी में आता है तो दुखी हैं कहते हैं, और उन पलों में अक्सर हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे जो सुख हैं, छोटी छोटी जो खुशियां हैं, उन्हें जीना भूल जाते हैं। मृत्यु आ जाएगी, हम इस दुनिया से चले जाएंगे कहते कहते हम अपनी जिंदगी को नहीं जी पाते हैं। यानी जो हमारे पास आज है हम उस पर ना ध्यान दे के हम कल कैसा होगा उस पर ध्यान देते हैं। हमारी जिंदगी में दुख आएगा, हमारी जिंदगी में कोई बड़ी खुशी आएगी, इस लिहाज से हमारी जिंदगी ही हमसे कब दूर हो जाती है इस बात का हमें पता भी नहीं चलता है। सोचा है कभी? नहीं सोचा तो सोचिए, और आइए आगे बढ़ते हैं इसी सोच के साथ, इस अगले गीत के साथ भी। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 107.01 पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

श्रोताओं, ये था आज एक और हमारा आपका खास सफर, जीवन के आधार से जुड़ा और जीवन के आधार से ही बना। इस एक और सफर पर आज हमने अपनी ही जिंदगी को समझने की एक और छोटी सी कोशिश की, कुछ ऐसे थॉट्स के साथ जो हमारे जीवन से, हम इस संसार की सच्ची बातों से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही कुछ थॉट्स और विचारों के साथ कल फिर से जीवन आधार में होगी आपसे एक छोटी सी मुलाकात। आज लूंगी विदा, नमस्कार।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, सुप्रभात दोस्तों। रेडियो ब्रिस्बेन के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जाने जैन, और शुरू हो गया है आपका फ्रेश फन और फुल ऑन देसी मॉर्निंग ड्राइव। जी हाँ, आपकी अपनी दोस्त यानी कि चांदनी लेकर हाजिर है चांदनी का सफर, ताकि आप सभी का ये सफर जो है बेहद ही अच्छा हो जाए। चाहे आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, स्कूल रन पर है, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, या बस चाय के साथ ना रेडियो सुन रहे हैं। आज का ये जो कीमती वक्त है आप सभी के नाम जी, आज है थर्सडे यानी कि वीकेंड की काउंटडाउन ऑफिशियली शुरू, बस एक दिन और फिर फ्राइडे वाइब्स। तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, चाय का एक सिप लीजिए और बोले गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी मॉर्निंग को इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, तो ये प्यारा प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना एंड आई होप कि आप सभी को मजा आया होगा। और दिन जो है ना, अगर शुरुआत सुबह की ना फ्रेश सॉन्ग के साथ, फ्रेश एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स के साथ हो जाए ना, बस जी वहीं पर बात जो है ना बन जाती है ना, दिन बन जाता है। तो अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, अपना एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ हम भी ज़रूर बढ़ेंगे। उसके बाद जानेंगे क्वींसलैंड ब्रिस्बेन की अपडेट, इंडिया की बातें, बहुत सारी न्यूज़ अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में।

इसी के साथ आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने ब्रिस्बेन की। क्वींसलैंड में सितंबर के दौरान टेम्परेचर जो है नॉर्मल से काफी ऊपर रहा है। अर्लियर दिस मंथ ब्रिस्बेन ने सितंबर का अनयूजुअली हॉट स्पेल भी एक्सपीरियंस किया था, जब टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था। तो दोस्तों, स्प्रिंग का सीजन है, मॉर्निंग में वेदर प्लेजेंट लगे लेकिन दिन चढ़ते चलते हीट जो है वो बढ़ सकती है। हाइड्रेटेड रहिए और साथ ही साथ आउटडोर प्लांट्स के हिसाब से वेदर चेक करना ना भूलिएगा। वैसे ब्रिस्बेन वालों, आज का टेम्परेचर आपके एरिया में कैसा है? नॉर्थ साइड, साउथ साइड, लॉगान, आईपीएस विच, सनी बैंक, और साथ ही साथ भाई ये भी बताएं कि आपके घर के बाहर वेदर कैसा है। मैसेज कीजिए रेडियो ब्रिस्बेन को। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इसी के साथ अब स्पोर्ट्स की बात हो और ब्रिस्बेन लायंस का नाम ना आए ऐसा भी कैसे हो सकता है। AFL ग्रैंड फिनाले वीकेंड बिल्कुल डोरस्टेप पर है। ब्रिस्बेन लायंस वर्सेस फ्रीमेंटल ग्रैंड फिनाले जो है सैटरडे यानी कि 26 सितंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा और मैच जो है दोपहर के 2:30 बजे से स्टार्ट होगा और ब्रिस्बेन फैंस के लिए एक्साइटमेंट और भी स्पेशल है। लायंस जो है वो फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर ग्रैंड फिनाले में पहुंच रहे हैं। फ्राइडे मॉर्निंग ग्रैंड परेड भी होगी और एंटरटेनमेंट लाइनअप भी जबरदस्त है भाई। काइली जी फ्लिप और साथ ही साथ माइकल परफॉर्मेंस देंगे। तो लॉन फैंस आर यू रेडी? जी हाँ, वीकेंड का प्लान बन गया, जर्सी रेडी है, फ्रेंड्स रेडी है और सबसे इम्पोर्टेंट भाई स्नैक्स रेडी है बिकॉज ग्रैंड फिनाले डे विदाउट स्नैक्स अनएक्सेप्टेबल। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

अब चलते हैं दोस्तों इंडिया की तरफ। एशियन गेम्स 2026 में इंडिया के लिए जो वेट लिफ्टिंग से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है वो ये है कि मेरा भाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर इंडिया के लिए वेट लिफ्टिंग में 28 ईयर्स का जो वेट है यानी कि 28 साल का जो वेट है वो खत्म किया है। और 24 सितंबर को भी यानी कि आज एशियन गेम्स में इंडियन एथलीट्स के कई इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो शेड्यूल है। स्पोर्ट्स लवर्स इंडिया को चीयर करना तो बनता है भाई। इसी के साथ दोस्तों मेडल सिर्फ पॉडियम पर मिलने वाली चीज नहीं होती है, हर एथलीट के पीछे होती है ईयर्स की प्रैक्टिस। सालों साल वो बहुत मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन, और वो काउंटलेस मॉर्निंग्स जब बाकी दुनिया सो रही होती है और एथलीट जो है वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सो टूडेज रिमाइंड स्मॉल स्टेप्स एवरी डे इवेंचुअली क्रिएट बिग रिजल्ट्स। जी हाँ, तो हमें भी इन चीजों से सीखना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप ही इंसान को सक्सेस दिलाता है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इसी के साथ अब टाइम है थोड़े एंटरटेनमेंट अपडेट्स का। साउथ सिनेमा से एक फ्रेश रिलीज बज में है भाई। नानी स्टारर द पैराडाइज 24 सितंबर यानी आज जो है वो थिएट्रिकल रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। फिल्म को फिल्म मेकर सुजीत ने भी रिलीज से पहले प्रेस किया है और ओटीटी लवर्स के लिए भी भाई ये वीक जो है काफी इंटरेस्टिंग है। इस वीक के ओटीटी रिलीजेस में जो शेख ट्रस्ट, नो वन, हंकर, द रोर ब्रदर्स, द लव हाइपोथिस और वोंकास द गोल्डन टिकट जैसे टाइटल शामिल है, तो वीकेंड के लिए भी मूवी लिस्ट तो बनानी शुरू ही कर दीजिए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तनहा है, रूह

सो दोस्तों, मैं थी आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी और आप सभी सुन रहे थे रेडियो ब्रिस्बेन में चांदनी का सफर। तो ब्रिस्बेन अपना थर्सडे अमेजिंग बनाइए, ड्राइव सेफली, स्टे हाइड्रेटेड, कीप स्माइलिंग और याद रखिए जहां देसी दिल वहां पर रेडियो ब्रिस्बेन। मैं मिलूंगी फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सेम एनर्जी के साथ। टिल देन गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन वंस अगेन एंड हैव अ ब्यूटीफुल थर्सडे। टेक केयर।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एमआई। सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लश्कर जैश अनगाइडेड मिसाइल है, ख्वाजा आसिफ को सता रहा पाकिस्तान के सीरिया इराक बनने का डर। पाकिस्तान आतंकवादियों का पनहगार है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को पनाह देने वाला ये देश अब खुद इस डर में है कि कहीं ये आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के ही खात्मे की वजह न बन जाएं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने देश में पनप रहे आतंकवाद की बात कबूली है। ख्वाजा आसिफ को डर सता रहा है कि जैश और लश्कर की वजह से पाकिस्तान का वो हाल न हो जाए जो सीरिया और इराक का हुआ है। अफ्रीका में अंधाधुंध फायरिंग, हमलावर ने घर में घुसकर 11 लोगों को मौत के घाट उतारा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी बंदरगाह शहर डरबन से एक बेहद भयावह और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां डरबन के एक टाउनशिप में स्थित घर में कुछ हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 11 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, जबकि इस खूनी हमले में 3 लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। व्हाइट हाउस में आने जाने की सुविधा विशेषाधिकार नहीं, ट्रंप द्वारा पत्रकारों पर बैन की डीओजे ने बताई वजह। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी फेडरल कोर्ट में एक अहम कानूनी दलील पेश की और कहा राष्ट्रपति के पास सुरक्षा कारणों से पत्रकारों को व्हाइट हाउस परिसर में आने से रोकने का संवैधानिक अधिकार है। न्याय विभाग ने तर्क दिया कि व्हाइट हाउस में प्रवेश पाना पत्रकारों का अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है। वॉशिंगटन की अदालत में दाखिल आधिकारिक दस्तावेजों में न्याय विभाग ने प्रशासन के इस कदम का बचाव किया। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट प्रेस की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये पत्रकारों को बिना अनुमति व्हाइट हाउस या संवेदनशील सरकारी परिसरों में प्रवेश का असीमित अधिकार नहीं देता। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा धार्मिक वजहों से वंदे मातरम न गाने पर कोई आपराधिक कार्यवाही न हो। वंदे मातरम के सभी अंतरे न गाने पर सजा के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक कारणों से कोई व्यक्ति अगर गीत नहीं गाता तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के जाने माने संगीतकार TM कृष्णा की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
5: All right, after that break, we are back. And I don't think I can connect. Oh, Bhaiji's coming on at the moment. So I'll just play another song in the meantime.

0: Brisbane and southeast Queensland. Brisbane can expect one or two possible morning showers followed by intervals of cloud and sunshine. The forecast maximum is approximately 25 degrees, falling to around 15 degrees overnight. A positive story. Gold Coast. Great-great-grandmother Betty Gregory celebrated her 95th birthday by skydiving. Well, AI said I could probably make it to 95, but has not mentioned about me skydiving. So, Amita, look at this lady, 95, and she's going to do skydiving. Oh, my goodness. Her sixth birthday jump since taking up the activity at 80. Despite recently moving into aged care and using a walking frame, Betty is already considering another jump next year. Wow. Dosto Betty Gregory, ne 95 saal ke baad umar mein, aasman se chalang लगाकर दिखा दिया. वाह, क्या बात है. उम्र सिर्फ एक नंबर है दोस्तों. जब दिल में हिम्मत और जिंदगी का जज्बा हो तो नए एडवेंचर्स के लिए कभी देर नहीं होती.
1: 95,
0: you know that? Yeah. Wow. नए एडवेंचर. यू कैन हैव एडवेंचर एवरी डे. डू समथिंग न्यू और गेट अ वैन कन्वर्टेड एंड जॉइन मी ऑन जर्नीज व्हेन आई टेक यू नो. You love it because this part of the life that you probably haven't seen. I know we go and travel and everything, but the way we do it, right, in the camper industry, is different. Okay? और आज मैंने AI को सुना हूँ, और आज मेरे मेन्यू में है फ्रेश दाल बनाऊंगा मैं, और राइस, और अमिता ने भी मुझे कुछ वो दिया था आपने साड़ी. The side dish will be sardined.
1: which your AI suggested you have? Tell me something. Did you give it a list of the ingredients you have and then it gave you a suggested menu? Or did it just say these things?
0: No, I did not give him the list I have. It itself suggested because new is Indian food, right? Dekho, iska karamat dekho AI ka. इन्होंने खुद ही मुझे लिस्ट दिया जो मेरे पास सब है.
1: सो हाउ डज इट नो यू
0: हैव AI नोज व्हाट इंडियंस यूज.
1: हाउ डज इट नो यू हैव सार्डिन्स.
0: ओके, सो
1: हाउ डज इट नो यू हैव सार्डिन्स विद यू.
0: नो, सार्डिन आई पुट इन. दिस वाज अ साइड डिश. इट डिडंट टॉक अबाउट सार्डिन. बट इफ आई हैड मेंशन दैट आई हैव सार्डिन, यू वुड हैव एडेड इट इन इट्स मेमोरी.
1: यस यस.
0: And would have suggested somewhere along the line how to use it with what to use, yep, and things like that.
1: Yep.
0: So और देखिए दोस्तों, आजकल का ऐसा ना हो कि सब चीज इजी हो जाए और हम सब कुछ AI के ऊपर ब्लेम करने लगे. यू नो, यू हैव टू बी केयरफुल. यू नो, AI कैन डू लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड प्रोबेबली बैड थिंग्स. वैसे इंसान भी तो अच्छाई भी करता बुराई भी तो करता है ना.
1: लाइक लुक एट दिस, स्टोल ऑल दिस मेडीबैंक स्टफ नाउ, पीपल्स डिटेल्स एंड थिंग्स.
0: ओके.

0: और सच में दोस्तों आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज कुछ लुका छुपी खेल खेल रहा है हमारे साथ यहाँ पर। और जी हाँ, कान मेक अप इट्स माइंड व्हाट इट वांट्स टू डू। खैर आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में अमिता, व्हाट एल्स वी गॉट?
1: Hey, what do you mean, what else we got? In terms of music or what's happening or what?
0: Everything.
1: Well, I'm flying tomorrow. I'm going to see my little granddaughter tomorrow.
0: Oh, you're going tomorrow, are you?
1: Yes.
0: Okay, all right. Have fun. Okay.
1: That's the big news for me.
0: Okay, yeah. Go ahead, enjoy yourself.
1: Thank you.
0: You'll have a lovely time with your granddaughter. I know you will. तो चले दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कुछ ज्ञान ध्यान की बातचीत हो जाए, थोड़ा जिंदगी के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, जिंदगी में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, ठीक है? कभी कभी चुप रहना, माफ कर देना और आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी है, उस पर टिकाना रहे दोस्तों आप, ठीक है? समझदारी है, अपनी एनर्जी उन लोगों और चीज़ों पर लगाइए जो आपकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून लाते हैं, ठीक है? और ज़िंदगी छोटी है, उसे गुस्से में नहीं, प्यार और मुस्कुराहट के साथ जिए, नहीं तो फिर क्या कहा था मैंने, रिंकल्स पड़ने लगेंगे, ठीक है, जो हमेशा गुस्से में रहते हैं।
1: तेरे गुस्सा,
0: लेकिन फिर कहते हैं कि गुस्से में तुम और भी अच्छी लगती हो, माशाल्लाह। तो समय समय से गुस्सा शायद बुरा नहीं होगा, जैसे कि तेरा गुस्सा, हाय हाय। तो गुस्से पर भी बहुत गीत है दोस्तों, गुस्ता की माफ कल सुना था आप शायद, दी हाँ जी कल बजाया था शायद, कल आई एम नॉट श्योर, हाँ हाँ कल बजाए थे हम ना, चेहरे पे गिरी जुल्फे,
1: आई कांट रिमेम्बर,
0: कह दू तो हटा दू मैं गुस्ता की माफ, ऐसे कुछ
1: yeah,
0: है।
1: Yeah, I think I did play that. Hey, I think I did.
0: Yeah, we did play that. Ah, see, my memory is still good.
1: Well, I'm playing so many different songs and thinking about so many things.
0: Well, I'm listening and playing different songs too, so there's no excuse.
1: Well,
0: Amy,
1: you see, when we're talking, sometimes a song comes to my mind and I quickly find it and play.
0: नहीं, सचमुच में आज का जो मौसम है, आज लगता है कि धूप बहुत कम चांस है यहाँ फॉरेस्ट में खिलने की। और खैर कोई बात नहीं, आज आखिरी प्रोग्राम है, नेक्स्ट वीक तो वी बोथ विल बी टुगेदर अगेन, एंड या सो व्हेन यू कमिंग बैक फ्रॉम सिडनी एमी?
1: संडे इवनिंग, संडे नाइट बेसिकली, यप,
0: ओके,
1: संडे नाइट, या I was told my volume was...
0: You seem to be increasing your days when you are in Sydney, aren't you?
1: No, I go on a Friday and I come back on a Sunday. How am I increasing? Tomorrow is Friday.
0: Oh, tomorrow is Friday. I'm sorry. Tomorrow is Friday, yeah.
1: Yeah.
0: Time has stood still for me, so I'm very sorry.
1: That's okay.
0: Okay. No more picking on
1: no
0: you. Come
1: on.
0: People don't like
1: me,
0: that.
1: Okay?
0: Yeah.
1: Yeah. Please.
0: Okay.
1: Oh, here we go.
0: You're a strong lady, you know. Put up with that.

0: दोस्तों, इस गीत को गाए थे किशोर कुमार और आशा भोसले ने। तो चलिए, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। और अमिता तो इतनी खुश है कि मैं क्या बताऊं, शी सो सो हैप्पी कि कोई ठिकाना नहीं है ना अमिता, बिकॉज यू गोइंग टू मीट दैट लिटिल प्रेशियस ग्रैंड डॉटर हु जस्ट स्टार्टेड सिंगिंग। I love the way she is singing. I mean, come on, kids are so beautiful, aren't they? Yeah, rather spend time with young ones than anyway.
1: It's nice to watch their development, like, you know, every little stage.
0: I know.
1: You know, it's just such a like milestone.
0: And not only the development and the expression.
1: I know.
0: And some of the kids I've seen, the way they've started twisting their tongue.
1: Oh,
0: it's amazing, you know.
1: Yeah.
0: The lingo.
1: Yeah.
0: Oh my goodness. Yeah. Anyway, it's beautiful. Kids are so beautiful. Yeah. Mm. Have a good time, eh? Enjoy your.
1: Thank you.
0: Every moment should be precious. Everything that you do in life should be precious. You should think as if, who knows, maybe you never get a chance to do it again. काम भी कर रहे हो, खुशी से काम करिए. हंसते गाते काम करिए दोस्तों, बिफोर यू नो,
1: आई नो राइट,
0: यू बी वेयर आई एम एट द मोमेंट।
1: या ओह,
0: नॉट नोइंग व्हाट डे इट इज,
1: दैट इज अ गुड प्लेस टू आल्सो बी इन, लाइक आई कैन टेल यू दैट, जस्ट सो केयरफ्री, यू नो।
0: ओह यस, ट्रू। अपने आप का अपना अच्छा दोस्त बनाइए दोस्तों। कभी ये बात सोचा आपने कि आप अपने आप का कितना अच्छा दोस्त है? करके तो देखो, बट वी टू बिजी विद लॉट ऑफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, लॉट ऑफ पीपल हैंगिंग अराउंड, लॉट ऑफ नॉइजेस आउट देयर, यू नो, कहां मिलता मौका? आपको मौका बनाना पड़ता है। ठीक है,
1: टेक द टाइम।
0: आई मीन सो मच सो पीपल आस्क, वेयर इज ही, व्हाट इज ही डूइंग, वेयर इज ही गोइंग? आई मीन सी, दिस इज जस्ट गोज टू प्रूव इट।
1: या आई नो, दे कांट सीम टू गेट देयर हेड अराउंड,
0: देयर नॉर्म, देयर नॉर्म लाइफ इज, या टू बी अराउंड पीपल,
1: अराउंड पीपल ऑल द टाइम।
0: Yeah, that's right. तो कभी कभी अपने आप के साथ भी गुजारो समय, ठीक है? तो चलो अगला जो गीत है सुनते हैं। और अमिता, you wanna play something?
1: I wanted to play this one here, so I'm gonna.
0: Okay, go ahead.
1: I was thinking about this song. Yep.
0: All right.

0: Wow, that was a beautiful song. Hello. Are you there? Are you there?
1: Yes, I am here. I was just watching this and I thought there was more to it, but yeah, a little bit more. But anyway, song has finished. I think there might be a dialogue at the end. Okay, Radio Biswani, aap sun rahe hain. Dosto, yaad rahe ki aap ho jayenge Sataakshi ke saath 9 baje. और फिर 11 बजे से पंजाबी प्रोग्राम आप सुनेंगे संदेश के साथ और 3 बजे से निविया के साथ. निविया गॉट ए टाइमिंग सो गुड व्हेन इट कम्स टू ट्रम्प बैशिंग. शी स्टार्ट्स द सेगमेंट राइट ऑन टाइम.
0: ओके
1: ओके या ओके. यू गोना प्ले सम?
0: ओह यस आई विल.
1: Okay, go ahead.
0: There we go.

0: Hey, I hope you enjoyed that song.
1: Yes, that was absolutely a beautiful, beautiful song. बहुत अच्छा लगा. और दोस्तों, उम्मीद है आपको भी आज के जो गीत है पसंद आ रहे हैं. जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक 1974 का गाना है दोस्तों. और कौन सा गीत है, चलो सुनते हैं.

0: जी हाँ दोस्तों, मूवी चरित्रहीन 1974 का गाना अभी आपने सुना, दिल से दिल मिलने का। जी हाँ, किशोर कुमार और लता जी से इस गीत को आपने सुना। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, कार्यक्रम में इस समय 20 मिनट हो गए हैं 8 बजकर, और चले आगे चलते हैं और क्या सुनते हैं आज। बस पुराने गीत हम बजा रहे हैं आप सभी के लिए।
1: यप
0: जी
1: ओके, हियर वी गो।

जी हाँ, बड़ा पुराना और अच्छा गाना आपने सुना. द रिजर्व बैंक कैश रेट इज करंटली 4.35% एंड इट्स नेक्स्ट डिसीजन इज ड्यू ऑन ट्यूजडे 29th September 2026. द बिग कंसर्न इज दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स अबव द RBI's 2-3% टारगेट while rising oil and energy prices could push the cost of living higher again. Financial markets are pricing in a very strong chance of a 0.25 percentage point increase to 4.6% next week, although the RBA has not made a final commitment. Such an increase could add roughly $90 to $95 a month to repayment on a 600,000 mortgage if banks pass it on fully. Wow. Oh well, आपने वो गाना बजाया अमिता, तो मैं सोचा चलो मैं ये गाना बजा दूँ.

जी हाँ दोस्तों, ये रात फिर ना आएगी का गाना, और ये गाना खास तौर पर हेलन के लिए। देखिए, हेलन एन रिचर्डसन खान बॉलीवुड की सबसे मशहूर मशहूर डांसर्स और कैरेक्टर एक्ट्रेसेस में से एक है। उनका जन्म 1938 में रंगून बर्मा जो अब जिसे म्यांमार कहते हैं, और में हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानीज इन्वेजन से बचने के लिए उनकी फैमिली को पैदल इंडिया तक बहुत मुश्किल सफ़र करना पड़ा दोस्तों, और फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हेलन ने छोटी उम्र में बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम शुरू किया। 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज के गाने मेरा नाम चिंचिंचू ने उन्हें बहुत फेमस बना दिया। उसके बाद पिया तू अब तो आजा, पिया तू अब तो आजा, हाउ अबाउट दैट एमी, ओ हसीना जुल्फों वाली, महबूबा महबूबा और ये मेरा दिल जैसे गाने उनकी पहचान बन गई। हेलन सिर्फ ग्लैमरस कैबरे डांसर नहीं थी, उनकी एक्सप्रेशंस कॉमिक टाइमिंग और डांसिंग स्टाइल बिल्कुल यूनिक थी। उन्होंने लोह के दो रंग, ओ दैट्स अ लवली सॉन्ग, लोह के दो रंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। यू नो दैट सॉन्ग दैट कम्स टू माइंड बट आई कैन रिमेम्बर। 2009 में भारत कॉमिक टाइमिंग और डांसिंग स्टाइल बिल्कुल यूनिक थी। उन्होंने लोह के दो रंग, ओ दैट्स अ लवली सॉन्ग, लोह के दो रंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। You know that song that comes to mind, but I can't remember. 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री

0: I'll look it up. It's a lovely song.
1: Mm.
0: Okay. और फिर आगे बढ़ते हैं स्टोरी में दोस्तों. उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया. बाद में उन्होंने राइटर सलीम खान से, जो सलमान खान का पिता है ना, सलीम खान से शादी की और वो सलमान खान की स्टेप मादर बनी. ओके, सो हजारों रंग, समथिंग लाइक दैट, रिमेंबर? Okay, you play something and I'll look for that song.
1: Okay, so you're going to play a Helen song, right?
0: Right.
1: Okay, I will play something else. Okay?

0: Okay, Mita, that song that I was looking for, "Aa Gaya Dimag Mein."
1: Oh, goody.
0: बहुत दौड़ाना पड़ा मगज को, पूरा दिन भर का काम मैंने कर दिया गाना खोजने में, ढूंढने में. और ये गाना actually is not for Helen.
1: Oh.
0: Okay. But since I have already got the song, चलो मैं बजा दूं, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे. मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूं.
1: Okay.
0: इसमें है प्रेमनाथ.
1: Oh.
0: और फिल्म है, नॉट दैट ओल्ड, इट्स ओनली 1970.
1: Oh, 1970. Okay.
0: और फिल्म का नाम है जोनी मेरा नाम, और गाना है

0: माफी चाहता हूँ दोस्तों, इट इज इंडीड हेलन एक्टिंग इन देयर, या
1: ओके,
0: हुस्न की लाखोरंग फ्रॉम जोनी मेरा नाम 1970 मूवी जो था, ये स्क्रीन में परफॉर्म किया है हेलन, और इस गीत को कोई और ऐसा नहीं गा पाता एक्सेप्ट आशा भोसले. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. आई मीन ओके द सिचुएशन इज बिट यू नो, बट यानी कि ब्यूटी हैज काउंटलेस कलर्स एंड फॉर्म्स, विच एवर वन यू चूज यू विल फाइंड समथिंग कैप्टिवेटिंग, है कि नहीं. सो यही ये गाना है दोस्तों, और उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा. और चलिए
1: ओके,
0: वैसे बस अचानक याद आ गया मेरे दिमाग में गाना. You know,
1: yeah, yeah.
0: This funny, eh? How songs pop up.
1: I know.
0: When you least expect it.
1: True. It just pops into your head, like this one here came into my head.
0: Yeah, okay.
1: While you were playing that one, this one came
0: All
1: into
0: right.
1: my, sprung up okay. into my.
2: Latest updates के लिए Ultra Channels को subscribe करें और bell icon को press करें.

तो देखिए दोस्तों, आप लोग हमेशा पूछते हैं यार, आप जंगल में क्या कर रहे हो? मैं आया हूँ जंगल में मंगल सिंह को मिलने, ठीक है? तो चलिए जंगल में मंगल का एक गाना सुनाता हूँ मैं, और शायद आपको ये गीत अच्छा लग जाए। बहुत अच्छा गाना है। तुम कितनी खूबसूरत हो दोस्तों।

0: शॉर्ट एंड स्वीट गाना था और उम्मीद है ये गीत आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इसी के साथ आठ बजकर अभी कोई 5-7 मिनट है,
1: सिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब
0: किया है 9 बजने में दोस्तों। और जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि 9 बजे से आप हो जाएंगे जी हाँ शताक्षी के साथ, और फिर 11 बजे से संदेश के साथ, और 3 बजे से निविया के साथ। ठीक है, तो कार्यक्रम सुनते रहे दोस्तों। आई यू गॉट समथिंग टू प्ले और व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट आर यू गोइंग टू प्ले नेक्स्ट? एक आई गॉट वन अदर वेरी लवली सॉन्ग, यू नो, होपफुली Okay, well, we might as well say goodbye on this one.
2: Okay, sure.
0: Eh?
2: Yes.
0: ये मेरे जीवन साथी का गाना है, 1972 मूवी का गाना है दोस्तों। और इस गाने में कौन है इसमें, मेरे ख्याल से राजेश खन्ना है, तनुजा भी साथ में है, किशोर कुमार का ये हिट गाना है। ठीक है,
2: so namaste everyone, have a beautiful weekend.
0: Yes, and oh, by the way, you are going, and
2: I am going,
0: and yeah, you have a lovely
2: Thank
0: holiday.
2: You.
0: And say a big give my love to the little one.
2: Okay, I will.
0: Okay, maybe you have to show her my picture, then she'll remember me.
2: Yes, okay. Namaste everyone.
0: Okay, take care. See you. Bye bye. चलते इस गाने के साथ दोस्तों।

और दोस्तों याद रहे नीलम के साथ हो जाएंगे कल, आप सुबह भूलना मत। चलिए दोस्तों मिलते हैं, हम दोनों मिलेंगे आपको सोमवार को।

रात को कई सपने देखे हैं, कई ख्वाब ऐसे हैं जिन्हें पूरा करने का उन ख्वाबों में ही दिल चाहा था, लेकिन तब तो रात थी, आप उन ख्वाबों को चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते थे। लेकिन आज आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज ये नई सुबह आपकी जिंदगी में रोशनी बिखेरने के लिए फिर से तैयार है और आपको आपके ख्वाब पूरे करने का एक मौका भी तो मिल गया है। तो चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आज का ये दिन भी ख्वाबों के साथ ही रात में गुजरे, आप आज भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और दिन चुटकी बजते ही आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि शुरू होने के बाद ये दिन दम कहाँ लेता है, बस हर पल आगे भागता ही रहता है। लेकिन हम इस दिन को यूं ही जाया नहीं जाने देंगे, हम अपने सपनों को आज अभी इसी वक्त से पूरा करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, वेलकम, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं सताक्षी, एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में, और लेकर आई हूं आज आपके लिए ढेर सारे सपने, वो सपने जो आपको देखने नहीं है उन्हें सच करना है। और अभी आपके सपनों को सच करने के लिए आप अगला कदम उठाएं, उसके साथ ही साथ हम प्ले करते हैं आपके लिए ये अगला ट्रैक भी। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रसवानी, मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

वेलकम बैक इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर, आपके साथ सताक्षी है। गुड मॉर्निंग आपको एक बार फिर से दोस्तों। और इसके पहले कि आज के प्रोग्राम का आगाज करें, अपनी बातों का आगाज करें कहना चाहिए, विश करते हैं उन्हें जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास हमेशा की तरह। जी हाँ, जिनका आज है हैप्पी बर्थडे यानी जिनका आज जन्मदिन, उनको बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। और देखिए, किसी भी एज के हूँ आप, हैप्पी बर्थडे सुनना ना हर एज में अच्छा लगता है, हर एज में अच्छा लगता है गिफ्ट्स लेना आज के दिन, हर एज में अच्छा लगता है आपको कोई सरप्राइजेस दे और आपको कोई स्पेशल फील कराए। तो देखिए, ये हमारा सरप्राइज था भी आपके लिए और नहीं भी, क्योंकि आपको पता था कि सताक्षी आज विश करेगी। और सरप्राइज इसलिए क्योंकि कहीं एक उम्मीद थी कि हो सकता है भूल भी जाऊं, लेकिन मैं भूलती नहीं हूं क्योंकि आप मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं और मुझे पता है कि आज का दिन आपके लिए खास है। वैसे खास तो उनके लिए भी है जिनकी आज शादी हुई है, यानी कि जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है। जनाब, शादी की कोई भी सालगिरह हो, हमेशा हर मोड़ पर ये विश जो है ये अच्छी लगती है कि आपको शादी की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और ये सबसे ज्यादा उससे सुनना अच्छा लगता है जो आपके लिए खास है, यानी जिसका आपके साथ आज बंधन बंधा है। तो उनको जरूर विश कीजिए और जिंदगी के हर कदम पर एक दूसरे के साथ कदम ताल होते हुए चलिए, यानी कि कदम से कदम मिलाते हुए चलिए। जिनके लिए आज का दिन है स्पेशल और खास, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको डेडिकेट करूंगी ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट
1: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर आप हैं सताक्षी के साथ, और सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट वाला शो इट हैपेंस। दोस्तों, जिस दिन इंसान खुद की वैल्यू करना सीख जाता है, उस दिन उसे पता चलता है कि वो लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकता है और बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, आप खुद की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, तब तक ज्यादातर टाइम ना आप दूसरों के सपनों को पूरा करते रहते हैं, आप दूसरों की वैल्यू करते रहते हैं, आप उनके आगे बढ़ने में ना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहते हैं। इसलिए खुद की वैल्यू को जानिए, उसे समझिए, ताकि आप अपने लिए एक नई राह बना पाएं और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी पहचान बना पाएं। क्योंकि जब आपकी पहचान बनती है ना, तो बाकी तो बाद में खुश होते हैं, उनको कुछ बाद में मिलता है। सबसे पहले जो खुशी होती है वो आपको तो होती है, उसके साथ ही साथ आपको ये रियलाइज होता है कि यार आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए वो इम्पोर्टेंस आज से ही पहचानिए और खुद की वैल्यू कीजिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी से, तक्षी के साथ सुनते रहिए आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। आगे बढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे एक और ट्रैक।

एटीप्रस्वानी 1701 AM पर आप हैं सताक्षी के साथ और मेरे साथ सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट वाला शो। जी हाँ, आप मेरे साथ इस वक्त इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम तब होती है जब हम मांग तो सही चीज रहे होते हैं बट गलत इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आप जरा सोच कर देखिए कि आप अपना दुख उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने कभी दुख देखा ही नहीं है, जिसने कभी दुख दर्द फील ही नहीं किया है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके इमोशंस को या पेन को उसी तरह समझेगा, उसी तरह जानेगा और वो जो है वो आपको उस पेन से बाहर निकलने का तरीका बता पाएगा या आपके साथ उस पेन को फील कर पाएगा। कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जिसने वो चीज फील ही नहीं की है वो कैसे आपके इमोशंस को समझ सकता है। तो इसलिए जब आप अपनी बात किसी से कहें, अपना सही गलत, सक्सेस या फिर फेलियर आप किसी के साथ शेयर करें, बांटें, तो देख तो लें कि वो इंसान उस बात को समझने वाला है कि नहीं है, आप सही इंसान से सही चीज कह रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ेंगे आगे। K+2 रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए और सुनते रहिए इट हैपेंस। ये अगला ट्रैक अभी आपके लिए।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: गानों की हैट्रिक जी।

रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर आप एंजॉय कर रहे हैं गानों की हैट्रिक। जी हाँ, तीन बैक टू बैक ट्रैक सताक्षी आपको इटहैपेंस में सुनवा रही है। और अभी एक और गाना याद आ रहा है मुझे जो गानों की हैट्रिक का अगला ट्रैक है। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्थानी, यूं ही सुनते रहिए और फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए मेरे साथ।

गानों की हैट्रिक आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्पानी पर। दोस्तों, सुबह की खास बातों के साथ हमारा और आपका इट हैपेंस पर साथ अभी थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, क्योंकि गानों की हैट्रिक हमारा साथ निभा रही है, यानी तीन बैक टू बैक ट्रैक्स हमारा साथ दे रहे हैं। फिलहाल यह आखिरी ट्रैक आज के इस सेगमेंट का, और इसके बाद कहीं मत जाइएगा जनाब, इट हैपेंस में आपके साथ ढेर सारी बातें होने वाली है। Keep listening to रेडियो ब्रिस्पानी 107.01 FM।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड

वेलकम बैक रेडियो प्रस्वानी पर, मेरे साथ यानी कि सताक्षी के साथ इस वक्त आप एक बार फिर से हैं और मेरे साथ जिंदगी की कुछ खास और बेहतरीन बातों को आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। दोस्तों के साथ जो किस्से चलते हैं, दोस्तों के साथ जो बातें हम करते हैं या अपनी अपने सीक्रेट्स कभी कभी शेयर करते हैं, वो जो है वो बहुत ही अनमोल फ्रेंड्स होते हैं हमारे, है ना। चार दोस्त जब बैठ जाते हैं, अच्छे वाले दोस्त, तो दिन रात का पता नहीं चलता कितना कुछ आपने दिल में भरा हो, वो सब कब कैसे खुलता जाता है, निकलता जाता है, आप कितने हल्के हो जाते हैं पता नहीं चलता है। आपको पता, मुझे लगता है कि आज जो डिप्रेशन हमारी जिंदगी में आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि हम सब दोस्त इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं ना दोस्तों, कि एक दूसरे को समझने का, उनसे बात करने का समय ही नहीं है। पहले के टाइम पर जब शाम को सब मोहल्ले में इकट्ठा हुआ करते थे, कॉफी शॉप पे इकट्ठा हुआ करते थे, स्कूल कॉलेजेस के बाहर जब दोस्त मिला करते थे, तो मन हल्का हो जाता था। इनफैक्ट ब्रेकअप्स के झटके भी इतने नहीं लगते थे कि इंसान सुसाइड करे, उस मोमेंट तक नहीं जाते थे लोग, क्योंकि वो आंसुओं में एक दूसरे के कंधे पर सर रख के वो सारी चीजें निकल जाया करती थी, सॉर्ट आउट हो जाया करती थी। लेकिन आज वो वक्त है कि हम सोशल मीडिया पर तो बहुत जुड़े हैं, लेकिन अपने दोस्तों से मिलने का हमारे पास वक्त नहीं है। और देखिए ना, जैसे कि मैंने बात शुरू की थी इसलिए कि हम और आप कितनी सारी बातें शेयर करते हैं बेस्ट फ्रेंड्स की तरह, और कब वक्त गुजरता जाता है पता नहीं चलता है, है ना। तो कम से कम आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं आपके इमोशंस जो हैं, वो बिल्कुल हम समझते हैं और हम उनका ध्यान रखते हैं, और इसीलिए ये सारी बातें जो है वो हम आपसे करते हैं, आपके लिए इतने अच्छे गाने प्ले करते हैं। गाने से याद आया, एक और गाना भी आपको सुनवाने जा रही हूँ, आप इसे इंजॉय तो जरूर कीजिए, मेरे साथ बातें भी जरूर कीजिए, लेकिन अपने उन दोस्तों के साथ अगर आप कांटेक्ट में हैं जो आपको समझते हैं, आपके दिल को समझते हैं, तो जरा एक फोन इस गाने को सुनते सुनते उन्हें भी लगा दीजिए। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ, स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

रिसेंटली ना मैंने रियलाइज किया कि आजकल हमारी जिंदगी में एक एडिक्शन और ऐड हो गया। जी हाँ, वैसे भी बहुत सारे थे, तरह तरह के एडिक्शन हैं आजकल, तो मतलब सोशल मीडिया भी एक एडिक्शन बना हुआ है, फोन भी एक एडिक्शन बना हुआ है, लेकिन अभी जो एडिक्शन हमें हो गया है वो है कि दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम हम बहुत शेयर करते हैं। जो मिलेगा उससे कहेंगे, जो मिलेगा उससे कहेंगे, एडिक्शन नहीं तो और क्या है भाई। हम जहां भी जाए, जिससे भी मिले, एक आध बार तो अपनी प्रॉब्लम उसके साथ बांट ही लेते हैं, शेयर कर ही लेते हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि लाइफ में कल भी प्रॉब्लम्स थी, आज भी हैं और शायद कल भी रह सकती हैं। बट आप ये तो जानते हैं ना कि हम जिस चीज के बारे में जितना बात करते हैं वो चीज उतनी ही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो कोशिश करिए कि जितना कम अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर करें। और वैसे भी दोस्तों, हर एक इंसान जिससे आप मिलते हैं वो आपके इमोशंस को नहीं समझता, आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझता है। बहुत सारे लोग तो इस बात पर खुश हो जाते हैं कि आप दुखी हैं, तो अपनी बात को सबसे मत कहिए, एडिक्शन अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ेंगे आगे। की प्लस इनटू रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं आप आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।